मिडी वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो

0: महात्मा भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today.

परमात्मा जिसके अनेकों रूप हैं, कभी पिता के रूप में हमें वो सीधे सच्चे मार्गों का ज्ञान करवाता है, तो कभी मां सा स्नेह प्यार हमें देता है।

जिसका कोई नहीं उसको पाता हूँ मैं, हूँ अनाथों का मैं नाथ, आता हूँ मैं। बल से निर्बल हुई थी जब द्रौपदी, बन के साड़ी में हर तार में छा गया हूँ।

पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहे पर उसमें अग्नि उत्पादन शक्ति नष्ट नहीं होती, घर्षण करने से पत्थर में अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भक्त जब अपने हृदय में जन्मों से पानी में पड़े पत्थर रूपी मन पर अगर रगड़ करता है तो हमारे अंदर दिव्य शक्ति है वो जागृत हो जाती है। फिर हर पल ये आंखें उस परमात्मा को ही देखना चाहती हैं।

जिस तरह लोभी धन में महत्व बुद्धि रखता है, ऐसा ही भाव अगर कोई परमात्मा के लिए रखे तो भगवान दुर्लभ नहीं है।

हम दुनिया के किसी भी भोग को भोग लें, लेकिन हमारे मन को कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अविनाशी परमात्मा के बच्चे हैं। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ये आत्मा सुखी नहीं हो सकती।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए शिवदयाल शर्मा से, विषय है तृष्णा।

तृष्णा, भोगे हुए पदार्थ को पुनः भोगने की इच्छा होती है। शरीर में दसों इंद्रियां पूर्व में उपभोग की हुई वस्तु को बार बार मांगती है। मन में इच्छा होती है, कल समोसा खाया था वैसा ही आज बनाओ, बड़ा स्वादिष्ट था, ये स्वादेंद्री की चाहत है। अमुक की आवाज में वे गीत बड़ा मार्मिक था, बार बार सुनने को जी करता है, वास्तव में यह श्रवणेंद्रिय की इच्छा है। मैं तो अमुक इत्र को पसंद करता हूं, उसको पाने की इच्छा रहती है, क्या करें आजकल मिल ही नहीं रहा है, यह घ्राणेन्द्रिय की लालसा है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्री अपनी भोगी हुई वस्तु को पुनः पुनः भोगने की इच्छा करती रहती है, यही तृष्णा है। और परम विचारक महर्षि अष्टावक्र जी ने कहा है कि यह संसार तृष्णा है, यदि तृष्णा नहीं तो यह संसार ही नहीं, तृष्णा का अंत ही मोक्ष है। जीव मौजूदा जीवन में तृष्णा के माध्यम से पारलौकिक जीवन के लिए पोटली बांधता है। इस पर भर्तृहरि का एक मार्मिक श्लोक है, वलिभीर मुखमाक्रांतम पलितेनांकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। अर्थात इस क्षीयमान संसार में सब कुछ दिनों दिन क्षीण हो रहा है, घट रहा है। बचपन और जवानी का सुंदर शरीर, मुख की कांति वली पलित अर्थात सफेद बाल होना आक्रांत हो रही है,

0: सने सने इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, सब कुछ बूढ़ा हो रहा है, परंतु तृष्णा ही एक ऐसी है जो प्रतिदिन जवान हो रही है। जीवन में एक भ्रमजाल है जो जीव यानी मनुष्य को आलोड़ित करता रहता है। उदाहरण से समझें, एक व्यक्ति सोचता है मैं यदि उच्च पदासीन हो जाऊं तो फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति उच्च पद भी प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद क्या ये तीसरी हो जाती है? नहीं, अब तो वह आगे फिर पुनः पदोन्नति प्राप्त करने की होड़ में लगा रहता है। जो उच्च पदासीन है ऐसा प्राप्त करके भी पुनः पुनः उसी की मांग करता है, इसका मतलब यह हुआ कि तृष्णा का पेट कभी भरता नहीं है। महर्षि अष्टावक्र जी ने यही कहा है कि जब तक तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, कुछ महसूस करने वाली है, तब तक तुम संतुष्ट नहीं हो सकोगी। तृष्णा का अर्थ ही यह है, और चाहिए और चाहिए। और क्यों चाहिए, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि तृप्ति नहीं हुई इसलिए ये मन अधिक चाहता है। ये मन अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाकर अपने जंजाल में फंसा ही लेता है, क्योंकि तृष्णा ही संसार है और तृष्णा से मुक्ति ही मोक्ष है। अतः तृष्णा को त्यागो और सुखी हो जाओ। सुख की कामना तो सबको रहती है, परंतु सुखी कोई नहीं। शरीर वृद्ध हो जाता है, परंतु तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, वह तो दिनों दिन तरुणी होती रहती है। यहां पर प्रत्येक वस्तु पदार्थ प्राणी मात्र को एक न एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाना है। संसार परिवर्तनशील है, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, उसका नाश भी नहीं होता। घर बन जाए ये आवश्यकता है, अच्छा बन जाए ये इच्छा हुई, और एक नहीं दो तीन होने चाहिए, इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा रूपी अग्नि की लपटें प्रतिपल मनुष्य को जलाती रहती है। हम तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाना चाहते हैं तो इच्छा रूपी लकड़ियां डालते रहेंगे तो क्या अग्नि बुझ सकती है? नहीं, वह आग कभी बुझने वाली नहीं है। हमें ईंधन डालना बंद करना होगा। सुख को त्याग दो तो सुख की मजाल नहीं कि वह तुम्हारे पास न आएगा, और सुख को चाहते रहो तो मजाल है दुख तुमसे दूर चला जाए। ये अष्टावक्र जी का उल्टा गणित है। सुख को त्यागो सुखी बन जाओगे, और सुख को मांगो दुखी हो जाओगे। सुख को त्यागो, सुख की तमन्ना मिटी कि सुखी हो गए। अभी यह बाकी है, अभी वह बाकी है, यही संसार बंधन है, और नहीं यही मोक्ष है। जितना है पर्याप्त है। अतृप्ति अर्थात अशांति, जो तृप्त हो गया उसे मृत्यु का भी भय नहीं है।
1: अभी आपने चिंतन सुना शिवदयाल शर्मा से, विषय था तृष्णा। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

0: खेतिया आवाज के कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा, पशुओं के लिए संतुलित आहार अजोला। खेत कल्याण कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:50 पर। किसान भाई चौपाल कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7:00। मरुमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे ओम प्रकाश भाट। मानस गान आप सुना करते हैं प्रातः 7:20 पर, भाग संख्या होगी 287। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। भजन आप सुन सकते हैं 8:45 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30। 10:00 दिन में, 11:00 दिन में, 2:30 पर। फिल्मी भक्ति संगीत का समय रहेगा 7:45। अनुरोध गीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 12:05 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:00। महिला जगत कार्यक्रम में दिन में 1:05 पर जानकारी के विषय रहेंगे, सतर्क और जागरूक रहकर बचें परेशानियों से, महिलाओं के लिए बीमा पॉलिसी, कान का रखे ध्यान, सब्जी वही अंदाज नया, फिल्मी गीत भी सुनवाए जाएंगे। युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:00। सराइके का समय रहेगा 6:05। एपिसोड संख्या होगी 19। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 12:30 पर और 9:15 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिन में 3:00। स्पोर्ट्स स्कैन 8:30 पर। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम 10:00। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी 6:40 पर हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। 15-2000 वर्षात् अनन्तरं इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं, भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराती भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः, विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः, भारत टैक्सी संबद्धाः 4,000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्ष

0: कक्षाया आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयकसंयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेशारक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां, दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकातादुर्घटनायाम् आहतानां संख्या एधित्वा 16 सञ्जाता अस्ति। तत्र व्रणितानाम् उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का

आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: equipment that is part of the operation. Two Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft departed for Venezuela yesterday, carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts. Meanwhile, the death toll in the two powerful earthquakes in Venezuela has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through the rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital. The United States has conducted strikes against Iran, saying the action was in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz a day earlier. The U.S. Central Command, CENTCOM, said its forces targeted missile and drone launch sites as well as coastal radar installations across Iran overnight. The strikes came shortly after U.S. President Donald Trump told reporters at the White House one will find out if there will be consequences for Iran's violation of the ceasefire agreement. Meanwhile, Iran's military spokesperson Ibrahim Al-Fikr said that Iran's response to the U.S. attack this time will be swift and decisive. In a series of posts on social media, Al-Fikr said that Iran will choose the appropriate time and place to answer back. In FIFA World Cup 2026, France defeated Norway 4-1 in Group 1 clash at Boston Stadium in Massachusetts, U.S. Ousmane Dembele scored a first-half hat-trick, helping France to finish atop of Group 1. In other Group 1 fixtures, Senegal defeated Iraq 5-0 in Toronto. This big win keeps Senegal in contention of reaching the last 32 as one of the best third-placed teams. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1. At the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London, after Abu Bakar gave Pakistan an early lead, India staged a remarkable comeback with seven different goal scorers. Sukhjit Singh and Harmanpreet Singh scored in the second quarter, while Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal added four more goals in the third. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेतिया रवास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है पशुओं के लिए संतुलित आहार अजोला।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों खेती बाड़ी गए सागे सागे किसान भाइयों जगह खेती शू जुड़ेड़ा और भी काम धंधा जगह करे जगह शू के एक तो अपने खेती शू जुड़ेड़ा हुआ है और दूसरा के अपनी किसानों की अर्थव्यवस्था जकी थोड़ी सुदृढ़ हो जाए इन खातर इन शू जुड़ेड़ा काम धाम भाई लोग जगह करता रहे पर बामे जी आप वैज्ञानिक ढंग अपनावा या नया तौर तरीका अपनावा तो बी व्यवसाय में भी आप अच्छो लाभ है जको ले सका। अब आप व्यवसाय की बात करा तो किसान भाई जगह खेती पाती शू जुड़ेड़ो पशु पालन को काम धाम है जको करे और पशु पालन को काम धाम इश्यू है कि जको हर परिवार है जको थोड़े या बड़े पैमाने पर करे पर इमें विशेष तौर कई भाई लोग तो इसे जगह पशुपालन को व्यवसाय है जो भी रोजगार है भांगे पर इमें आप सुनियोजित ढंग से या पशुपालन को काम धाम है जो अच्छी तौर तरीके से करा तो वो भी आपने ये कैसे किसान की अर्थव्यवस्था में बड़ो ठोस आधार है जो प्रदान करे। ये पशुओं ने आप रखा तो मन वर्ष भर ताई फसल का अवशेष है तूड़ी है नीरो है इन पर अपने पालना पड़े पर इंगे सागे सागे हरियो चारो भी अपने टेम सारो दियो छठ बारह महीना हरियो चारो लगातार मिले कोनी जैके शू पशुओं में बढ़ोतरी जकी कम हो जाए दूध उत्पादन में कमी आ जाए और इंगे सागे सागे प्रजनन क्षमता पर भी इंगो विपरीत प्रभाव पड़े। इन समस्या शू निजात पाने खातर अपने वैज्ञानिक पशुओं खातर अजोला पशु आहार है जो विकसित करो है तो वो आहार के तरीके से आप इन्हें उत्पादन कर सका और क्या वो पशुओं ने खिलाया जाए। अजोला दुधारू पशुओं खातर उत्तम गुणवत्ता युक्त पूरक आहार है। अजोला जल स्तर पर मुक्त रूप से तैरने वाली तेजी से बढ़ने वाली जलीय फर्न है। अजोला छोटे छोटे समूह में सघन हरित गुच्छे की तरह तैरती रहे वो उत्तम गुणवत्ता युक्त वाला प्रोटीन को अच्छो स्रोत है। पशुओं खातर प्रोटीन को मुख्य स्रोत है। अजोला की पिनाटा जाती है जिकी पाई जाए। अजोला सामान्य अवस्था में ओफर 3 दिन में दुगुनी हो जाए। पशुओं का तर आदर्श आहार है। किसान भाइयों अजोला उत्पादन तकनीक के बारे में बातचीत करा। छायादार जिग्या प्राप्त ने 20x3x1 फुट यानी के 20 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी आकार की अपने क्यारी जिकी बना लेनी चाहिए। इन क्यारी में प्लास्टिक सीट अच्छी तरह बिछा गए और

0: ऊपर के किनारा पर मिट्टी चूमे ने दबा कर मजबूत कर देनी चाहिए। इन क्यारी में 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत जकी व्यापन ने बिछा देनी चाहिए। 5 से 7 किलोग्राम गोबर जो को 2-3 दिन पुराना होना चाहिए। 10 से 15 लीटर पानी में घोल बना के मिट्टी में अपने फैला देना चाहिए। क्यारी में 7 से 8 इंच तक पानी भरना चाहिए। जैके शूँ क्यारी में पानी की गहराई है जैकि लगभग आधे फुट तक हो जाए। अब उपजाऊ मिट्टी और गोबर की खाद ने जल में अच्छी तरह घोल बना के क्यारी में अपने घाल देना चाहिए। इन घोल में 2 किलोग्राम ताजा अजोला ने फैला देनी चाहिए। इनके बाद में 1 लीटर पानी को अच्छी तरह से अजोला पर छिड़काव कर देना चाहिए जैके शूँ अजोला आपकी सही स्थिति में आ जाए। अब क्यारी ने नायलोन जाली से ढक देनी चाहिए क्योंकि मैं कीड़ा है कागला है या चिड़िया जका खावे ने तो इन्हें नायलोन की जाली से अपने ढक देना चाहिए। 15-20 दिन में अजोला ने की बढ़वार जकी हो जाएगी और 21वें दिन आपने लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्राप्त होने लग जाएगा। अभी अजोला ने अच्छी तरह अपने निकाल गए और साफ पानी से धो गए और दुधारी पशुओं ने देना चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम ताज़ा अजोला ने बांटे के माँ खिलाना चाहिए और दुधारू पशुओं ने देना चाहिए जैके शूँ 15% तय दूध उत्पादन में जैकी बढ़ोतरी हो जाए। किसान भाइयों पशुओं की शारीरिक वृद्धि में और दूध उत्पादन में वो उत्तम लाभ देवे। शुरू की अवस्था में अजोला की मात्रा प्रति पशु कम देनी चाहिए, धीरे धीरे इन्हें बढ़ानी चाहिए। अजोला में प्रोटीन रेशा इथर सत कैल्शियम फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम ए तो वही है। इनके सागे सागे अति सूक्ष्म तत्वों की बात करा जहाँ मैग्नीज है जिंक है तांबो लोहा सोडियम अंग भी पूर्ति हो करे। अब अजोला जो को आप क्यारी में गाले बिंग रख रखाव का भी अपना तौर तरीका ध्यान में रखना चाहिए। क्यारी में जल स्तर लगभग आधो फुट तक होना चाहिए। 3 महीना में 1 एकड़ पानी और मिट्टी ने बदलते रहना चाहिए जैके शू नई क्यारी के रूप में दोबारा संवर्धन हो जाए। अजोला की अच्छी बढ़वार खातर तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सर्दी की ऋतु में तापमान कम हो जाए तो क्यारी ने पुरानी बोरी या टाट या चादर से ढक के रखनी चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला की उपज प्राप्त करने खातर आपने 20 ग्राम सुपरफास्फेट और 50 किलोग्राम गोबर को घोल बना के हर महीने क्यारी में अपने मिला देना चाहिए। इस अपने हर रोज 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला जकी प्राप्त हो जाएगी। नई तरह से अजोला आहार देके पशुपालन भाई लोग लाभ है जो को उठा सके। पर अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: खेती रवास्ती कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे पशुओं के लिए संतुलित आहार अजोला। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं भगत सही राम।

अभी आप लोक भजन सुन रहे थे, कलाकार थे भगत सही राम। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 287।

श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए हनुमान अपने को मात्र उनका एक दूत बताते हैं। वे रावण को चेतावनी देते हैं कि राम से द्रोह करने वाले की रक्षा हजारों शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं कर सकते, किंतु पवन पुत्र के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति युक्त वचन सुनकर भी कुपित रावण उस वानर का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दूत का वध करना नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 287। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, ये एक अच्छी आदत है जो हमें हमेशा खुश रखती है। साफ सफाई को हम अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए भी अपना सकते हैं। साफ सफाई से हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिलती है, सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। अगर साफ सफाई से रहते हैं तो समाज में हमें सम्मान भी मिलता है। दोस्तों, हम गली मोहल्लों को भी साफ रखेंगे तो बीमारियां और मच्छरों से बचाव होगा। साफ सफाई का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।

बालिका शिक्षा का मतलब है लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। बालिका शिक्षा से समाज में बदलाव आता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बालिका शिक्षा से समाज में बेटा और बेटी में असमानता में भी कमी आती है। शिक्षित लड़कियां अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से कर पाती हैं। बालिका शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। कुछ एनजीओ भी बालिका शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें बेटी की

के साथ लिंगानुपात की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बालिका शिक्षा के मार्ग में हमारी सोच भी बाधा डालती है, क्योंकि हमारे समाज में बालिका शिक्षा के बजाय लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे आज भी बहुत सी लड़कियां पढ़ने से वंचित रह जाती हैं। वर्तमान समय में इस सोच में काफ़ी कमी आई है, फिर भी इस समाज को बालिका शिक्षा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी एक बेटी पढ़ती है तो इससे दो परिवारों में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

दोस्तों, बेहतर जीवन के लिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा हमारे जीवन का नाश कर देता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपना धन और सम्मान दोनों खो देता है। नशे के कारण व्यक्ति ने क्या खोया, इसका पता उसे तभी लग सकता है जब वह नशा छोड़ देता है। नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही समाप्त हो जाता है। नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है, साथ ही स्वयं एवं परिवार की स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। नशा करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ बन जाता है और उसका समाज और देश के लिए

योगदान भी शून्य हो जाता है। नशे से आजकल स्कूल बच्चे, बुजुर्ग और विशेष रूप से युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। इस अभिशाप से मुक्ति पा लेने में ही हम सब की भलाई है। नशे के नाश के लिए समाज के हर वर्ग को प्रयास करना चाहिए, तभी इस समस्या से हम समाज व देश को बचा सकते हैं।

सुप्रभात कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

सुप्रभात कार्यक्रम के आखिर में सुनिए शोर फिल्म का नगमा, आवाज़ें मुकेश और लता मंगेशकर की हैं।

0: अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न

0: क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
2: अमूल, इफ्को और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस

0: समझौते में संघर्ष विराम हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इजरायल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान

0: मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए। राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the programme.
4: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions including Amul, IFFCO and NABARD, Bharat Taxi operates on a zero commission model to pass the maximum financial benefits directly to drivers. Since its soft launch in December last year, this platform has registered over 1.5 lakh drivers and 7 lakh customers in Gujarat alone, completing more than 3,500 rides daily. The service will initially be launched across 14 major cities in Gujarat, including Ahmedabad.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासिरा वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में 2 बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और दो तरफा तआवुन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक ख़ास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनाकिद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के नुमाइंदगान और 4,000 से ज्यादा ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। इस तकरीब के दौरान आला तरीन कारकर्दगी की पेश करने वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म

0: हरकत का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के अवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संगी मील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। ये शख्सियतें मुस्तकबिल के जबरदस्त मौकों पर यकीन रखती हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों को मदऊ किया कि वो सरगर्मियों में गहराई पैदा करें, इख्तिरा को रफ्तार दें और मुश्तरका खुशहाली के लिए मजीद सरमायाकारी करें, क्योंकि सेटा से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ये कहते हुए हमले किए कि यह हमले एक दिन पहले आबनाए हुरमुज में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल व ड्रोन लॉन्च किए जाने के मकामात और साहिली राडार तंसीबात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि अगर ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे नताइज का सामना करना होगा। इस दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान इब्राहिम अलफकर ने कहा कि अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई इस मरतबा ज्यादा तेज और फैसला कुन होगी। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट्स में अलफकर ने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने देरपा अमन व सलामती के क्याम के मकसद से इसराइल और अमरीका के दरमियान अमरीकी सालिसी पर मबनी मुआहदे के फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। मुजवजा समझौते में जंगबंदी और जनूबी लबनान से हिजबुल्ला दस्तों को हटाया जाना और उसके सभी हमले रोकना शामिल है। समझौते के खाके का ऐलान करते हुए जनाब रूबियो ने इस मुआहदे को इस्तेहकाम की बहाली की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि यह पेशरफ्त चैलेंज से भरी है, ताहम इस वक्त उतनी ही नागुजीर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, माहे और शिमाली मशरकी भारत में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मशरकी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मर्दों के एफआईएच प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबकत दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए। अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मैक्सिको के गॉडराजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। यह मैच अमरीका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमरीका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए 2 टी20 बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप ने वजीर खारजा जयशंकर के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने हम मनसब चोहियोन के साथ दो तरफा बातचीत की खबर को अहमियत

एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

देखकर कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे समझा।

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी। मैं तुझे सब सच सच बताता हूँ।

0: अभी आप भजन सुन रहे थे, कलाकार थे अनूप जलोटा। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचारों को हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वे रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। करौली जिले में भी केंद्र और राज्य सरकार की एमएसएमई क्षेत्र की योजनाएं आम जन के सपनों को पूरा कर रही हैं। अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
2: एमएसएमई योजनाएं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र करौली के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर जिले के हिंडौन, करौली और मासलपुर क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बालोतरा में होने वाली मुख्य सभा स्थल पर पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला मुख्यालयों में तकनीक

0: की तैयारियां भी समय से पूरी करने को कहा है। उधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस नए टर्मिनल के शुरू होने से जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
1: अभी जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं, अभी तो पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। पिछले वर्षों से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके चलते हुए हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ने लगे। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग की आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: प्रधानमंत्री आज से सेशेल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशेल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में गांवों के समग्र विकास, प्रमुख ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा भी होगी। सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए किसानों को व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कल उदयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके लिए निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती तथा मशरूम उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। श्री गोयल ने उर्वरकों के पारदर्शी और वैज्ञानिक वितरण के लिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स फ्रेमवर्क को उदयपुर संभाग में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा। उन्होंने राजकीय कृषि महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को आधुनिक तकनीक से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने मशरूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। जयपुर में मातृभूमि अभियान के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों में वाटर रिचार्ज संरचनाएं बनाना अब अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल रीको के अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्हें अधिकारियों को इन संरचनाओं की ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैगिंग भी करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में 4-4 वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के शहीद और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर लिया गया है। स्मारक की त्रिआयामी दीवार पर भी उनका नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले

जवानों में नाम में पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं जिनमें सार्जेंट सुरेंद्र मोगा वायुसेना के और राजस्थान से एकमात्र शहीद थे। सार्जेंट मोगा को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जा चुका है और वायुसेना ने नई दिल्ली में अपनी एक विंग का नाम सुरेंद्र हॉल रखा है। इस सम्मान पर शहीद के पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र ने गर्व व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं ओम प्रकाश भाट।

मरो मंगल कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश भट्ट को।

मुरमंगल कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश भट्ट को।

मोर मंगल कार्यक्रम में अभी आप ओम प्रकाश भट्ट की गाई लोक रचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अप्रैल फुल से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं।

लीजिए अब सुनिए ये वादा रहा फिल्म का गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये युगल नगमे आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म होटल से। आवाजें मनहर और आशा भोंसले की हैं।

कार्यक्रम की अगली रचना हमने ली है फिल्म नागिन से। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की हैं।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

अभी आप युगल गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज महान संगीतकार राहुल देव बर्मन की जयंती है। आज ही के दिन 27 जून 1939 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उन्हें प्यार से पंजम दा भी कहा जाता था। वे हिंदी सिनेमा के सबसे महान और क्रांतिकारी संगीतकारों में से एक थे।

दोस्तों, आर डी बर्मन ने उस्ताद अली अकबर खान से, सरोद और पंडित समता प्रसाद से तबला सीखा। वे किसी भी वस्तु से संगीत निकालने में माहिर थे। उन्होंने दम मारो दम और चुरा लिया है तुमने जैसे गानों में बोतल और चमचों तक का इस्तेमाल कर अद्भुत धुनें बनाई। आइए सुनते हैं यादों की बारात फिल्म का यह गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

दोस्तों, इस समय आप फिल्म संगीत कार्यक्रम में सुन रहे हैं आरडी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध नगमे। आरडी बर्मन को 1995 में फिल्म 1942 ए लव स्टोरी फिल्म के लिए मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। आइए इसी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

पंचम दा ने अपने पिता के सहायक के रूप में काम शुरू किया और बाद में छोटे नवाब 1961 व तीसरी मंजिल 1966 जैसी फिल्मों से स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत सुनते हैं। आवाजें आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की हैं।

दोस्तों आरडी बर्मन ने किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी जैसे गायकों के साथ कई सदाबहार गीत रचे। उनकी प्रमुख फिल्मों में शोले, हरे रामा हरे कृष्णा, अमर प्रेम और परिचय शामिल हैं। अब सुनते हैं शोले फिल्म का ये गीत, आवाज़ें मन्ना डे और किशोर कुमार की हैं।

दोस्तों, फिल्म संगीत कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं संगीतकार आरडी बर्मन पर विशेष कार्यक्रम। अब सुनिए बेमिसाल फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में।

दोस्तों, 1970 के दशक में राजेश खन्ना के सुनहरे दौर में और किशोर कुमार के साथ मिलकर आर डी बर्मन ने लगभग 40 फिल्मों में ऐतिहासिक संगीत दिया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की फिल्मों में कामयाबी आर डी बर्मन के संगीत का भी योगदान था।

फिल्म आपकी कसम में जय जय शिवशंकर गीत भारतीय शास्त्रीय लय और पाश्चात्य ड्रम बीट्स का एक आदर्श संयोजन है। आइए सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, आर डी बर्मन ने भारतीय संगीत और पाश्चात्य जैज संगीत का अद्भुत मिश्रण किया है और वो इस बात के लिए जाने जाते हैं। पिया तू अब तो आजा, ये गीत फिल्म कारवां के से लिया गया है। इसमें केबरे गीत में पाश्चात्य ऑर्केस्ट्रा जैज हॉर्न का ऐसा तड़का है जो भारतीय संगीत के साथ घुल मिल जाता है।

¿cómo

दोस्तों आप सुन रहे हैं आरडी बर्मन पर विशेष कार्यक्रम पंचमदा ने भारतीय सिनेमा को हमेशा याद करने वाला संगीत दिया जो आज की पीढ़ी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरडी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध गीत। 4 जनवरी 1994 को महान संगीतकार आरडी बर्मन हम सब से विदा हो गए। फिल्म संगीत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसी गीत के साथ अपने दोस्त को दी इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

घड़ियां कभी नहीं रुकती, रुक तो हम जाती हैं किसी बात पर, किसी याद पर या किसी ऐसे दिन पर जो बहुत पहले गुजर चुका होता है। अजीब है ना श्रोताओं, वक्त आगे बढ़ता है पर दिल कभी कभी उसी मोड़ पर बैठा रह जाता है, ये दिल जहाँ से उसे हम चल देना चाहिए था। घड़ियों को चलना आता है पर इंसानों को सीखना पड़ता है निरंतर चलना। और फिलहाल श्रोताओं, वक्त हो गया है इस कार्यक्रम को शुरू करने का, तो पहला गीत आप सबके लिए

गोलमाल फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे हैं आप किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत आरडी बर्मन का है।

मिलना सिर्फ आमने सामने नहीं होता, कभी कोई लफ्ज़ में मिल जाता है तो कोई एक नज़र में, तो कोई मिल जाता है पूरी उम्र के लिए यादों में। ठहरे हुए रास्तों की तरह काश ये यादें भी ठहर जाती, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें भी ठहर जाती। जैसे अल्फाज के दीवाने तो मिल जाते हैं हमें राहों में, तलाश तो उनकी होती है जो खामोशियों में हमें पट ले। फिलहाल ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं

बाजीगर फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप विनोद राठौड़ की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है रानी मलिक ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

दोस्तों, अपेक्षाओं से हटकर जीवन को देखना एक अलग बात है। कांटों में भी सुंदर फूल को खिले देखना, पतझड़ में भी बहारों को आते देखना, दुखों में भी जीवन के अमूल्य पलों को याद करना, माना मुश्किल तो होता है पर नामुमकिन नहीं। हर निराशा एक आशा के साथ आती है, जैसे प्यार भरा ये गीत क्या कहता है।

प्यार तो होना ही था। जी हाँ, इस फिल्म से गीत सुन रहे हैं आप आशा भोसले और उदित नारायण की मिली जुली आवाजों में। शब्द रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कभी कभी देर होना भी जरूरी है। कैसे? सोचिए सोचिए, अगर हर फूल पहले ही दिन खिल जाए तो इन मौसमों का क्या मतलब रह जाएगा? अगर हर जवाब तुरंत मिल जाएगा तो सफर कौन तय करेगा? अजीब तो है ना दोस्तों, पर हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, जबकि प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीज़ें वक्त लेकर ही बनती है, और जो चीज़ें ठहर कर मिलती है अक्सर वही सबसे ज़्यादा टिकती है। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक को आप सुन रहे हैं इस गीत में। फिल्म का नाम है यस बॉस। शब्द रचना जावेद अख्तर की है और धुन जतिन ललित की है।

दोस्तों यात्रा कहते हैं जीवन में हमें यात्रा जरूर करनी चाहिए। यात्राएं शब्दों का श्रृंगार नहीं, यह जीवन का सत्य उजागर करती है। यात्रा में हमें थकान आती है, असुविधाएं भी आती हैं, योजनाएं भी हमारी विफल हो जाती है, लेकिन मनुष्य का सभ्यता और शिष्टाचार के आवरण से ढका हुआ स्वरूप सामने आता है। यात्रा केवल स्थानों की दूरी ही नहीं, मनुष्य की परतें भी खोलती है।

ए आर रहमान के संगीत से सजा ये गीत फिल्म स्वदेश से लिया है। आवाज़ें उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खैर की है और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि वह अकेला है, बल्कि इसलिए होती है कि उसके भीतर अनगिनत भावनाएं होती है और वो चाहता है कि उसे भी कोई समझे, कोई सुने उसे भी। जैसे नदी को समुद्र, चांद को आकाश और शब्दों को अर्थ, बिल्कुल वैसे ही।

श्रोताओं कुछ दर्द कभी नहीं चाहते, ठहरे रहते हैं किसी ढलान के नीचे, बोलते नहीं, बहते नहीं, चीखते भी नहीं, बस स्थिर बन जाते हैं। कभी कोई तिनका भर जो गिरता है इस दर्द की आगोश में, तो ये थोड़ी हलचल के साथ अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करवाते हैं और फिर ढलान के नीचे सरक जाते हैं। सच में कुछ दर्द कभी नहीं चाहते।

जावेद अख्तर का लिखा ये गीत है, संगीत मदन मोहन का है, वीर ज़ारा फिल्म का नाम, और आवाज़ें लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की है।

उलझनों की भीड़ में लापता सी है जिंदगी, हर सिरे से उलझी है ये जिंदगी। आसान थी कहाँ ये जिंदगी जो और भी ज़्यादा उलझकर मुश्किलें बना रखी है इस जिंदगी ने। भीड़ के शोरगुल में खो गई है जिंदगी, कई सुकून की घड़ियों में ये जिंदगी जैसे मोहब्बत के बिना दर्द सी हो गई है।

तन्हाई भी अजीब साथी है, जब कोई साथ नहीं होता तब यही सबसे ज़्यादा बातें करती है। कभी यादों की दरवाजे खोल देती है तो कभी आँखों को खामोश कर जाती है, और जब दिल बहुत भर जाता है तब चुपचाप आंसुओं में ढल जाती है।

फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। आवाज़ें उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत की है। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

अकेला बैठा व्यक्ति अकेला कभी नहीं बैठता। उसके साथ बैठती है वो तमाम उलझने जिसमें वो फंसा हुआ होता है। उसके साथ बैठती है वो सारी चिंताएं जिनमें वो डूबा हुआ होता है। उसके साथ बैठती है वो सभी यादें जिन्हें वो बार बार सोचता रहता है। उसके साथ बैठते हैं वो सारे ख्वाब जो अब तक अधूरे हैं। और अंत में उसके साथ बैठता है वो अकेलापन जिसे उसे सबसे अलग कर दिया।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की।

कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10:00। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा दोपहर की 12:30 पर और आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाजों में गायी कुछ चुनिंदा गजलें और सुगम संगीत होगा रात्रि 9:15 पर। खेत खलियान का समय रहेगा दोपहर के 12:50 पर और चौपाल का समय रहेगा आज शाम 7:00। इस कार्यक्रम में कृषि संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत का समय रहेगा दोपहर 1:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सतर्क और जागरूक रहकर कैसे बचें परेशानियों से, महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है बीमा पॉलिसी, कान का कैसे रखें ध्यान और सब्जी वही अंदाज नया कैसे अपनाएं, इस विषय पर भी चर्चा होगी और साथ ही होंगे कुछ चुनिंदा गीत और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी कृष्णा कुमारी। फिल्म संगीत का समय रहेगा आज दोपहर 2:30 पर, शाम 7:45 पर होगा फिल्मी गीतों पर आधारित भक्ति संगीत और एक ही फिल्म से जानकारी और गीत होंगे रात्रि 8:00। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा आज शाम 5:00। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जीवन में संयम कैसे रखें, रंगीला राजस्थान का महत्व, आओ जाने चूरू को, जीवों पर दया और आज के इतिहास पर भी चर्चा होगी। प्रस्तुति श्रीपाल शर्मा की रहेगी। श्रोताओं, हमारी आज की सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर और ये थे हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अनुरोध गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्मिति का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवाएंगे आपकी व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों के माध्यम से। ये पत्र हमें मिला है शिवपुरी से मोनिका।

जैन, कोटा से कविता शर्मा, अंबिकापुर से चरणजीत कौर सिंधु का। ये संदेश सिद्धार्थनगर दयारपुर भाबली से गजानंद येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले। पाकुड़ झारखंड से ये हमारे श्रोता है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का। गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगर, राजपाला, कार्तिक व देवांश। और इस गीत को सुनना चाहा है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मीढ़ा, अलका मीढ़ा। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता है विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन आटा, दीक्षा और कुश मूणत। तो लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं आंधी फिल्म से।

श्रोताओं, हमारे पास फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर की। ये गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से हमारे श्रोता है विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी, शगु

श्रोताओं, हमारे पास फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर की। ये गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से हमारे श्रोता है विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी, शगुन। और फरमाइश आई है गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालवाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह और इनका समस्त राजपुताना परिवार। ये छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की। हनुमानगढ़ टाउन से ये हमारे श्रोता है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिसान खान। और चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्शपाल जोसन मेलबर्न, रॉबिन सिंह जोसन वैंकूवर और टेलर मास्टर कुलदीप सिंह और डॉक्टर विचित्र सिंह। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है कटी पतंग।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं पड़ोसन फिल्म से, और इस गीत के लिए फरमाइश आई है आप सबकी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया की, बलोल नगर से हरीश हैरी जगतार जहरी सुशील डेलू और राकेश चाहर की, ये फरमाइश है कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव हिमानी हर्षिता और अभिषेक की, चंडीगढ़ से हमारे श्रोता है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कडवासरा सचिन सतीश योगेश युद्धव किरसन मायल हनुमान सहारण किड्डूराम जोया लीलाधर स्वामी कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा की, और इस गीत को सुनना चाहे बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजलिका से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन पाल वर्मा, बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित और तानिया नारंग, नई बस्ती गंज डूडवाड़ा से

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाते हैं, उससे पहले आप सबके नाम जिन्होंने हमें फरमाइश भेजी है। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, उपेश कुमार, ममता, मीतू, कीनू, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, फुरसाराम मेल, पंकज कुमार और हर्ष। वीरमगाम गुजरात से ये हमारे श्रोता है अजीत भावसार, प्रमीला, भावेश कुमार और सनी भावसार। मोहला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्वार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढूकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु और ईवा धारणिया की ये फरमाइश आई है। बुलढाणा वर्चिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार की। और फरमाइश है इस गीत के लिए गांव अरायन डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया। और ये फरमाइश है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार साई, सादुल शहर से रामकुमार रेवड़, चंद्रकला रेवड़, वरवट बकाल बुलढाणा से ये हमारे श्रोता है नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। जामनिया गाजीपुर से हमारे श्रोता है सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति। बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि, शिल्पा,

और ये फरमाइश है ऊपरकोट मोहल्ला चौक खुटी बुंदल शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार। अलीका डब्बाली से हमारे श्रोता है बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी और आप सबकी फरमाइश का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

सिलसिला फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप, और इस गीत के लिए फरमाइश आई है गांव फ्रांसी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, रंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्ण, राकेश जैन, और फरमाइश है ये गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। लीजिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ ही अनुरोध गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में गाई कुछ चुनिंदा गज़लें।

0: श्रोता अभी सुगम संगीत के अंतर्गत भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में गायक कुछ चुनिंदा गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान, और आज इस कार्यक्रम का विषय है प्राकृतिक खेती।
1: किसान भाइयों, खेती बाड़ी की बात करें तो अब जकी खेती किसान भाई करण लाग रहा है। वह खेती पर्यावरण के लिए, मानव जीवन खातर और अपनी भूमि वास्ते ज़्यादा बढ़िया या फिर लाभदायक कौन मान सकानी। उत्पादन भले ही ज़्यादा होने लाग रही है, पर मानव स्वास्थ्य पर बुरो असर भी होने लाग रही है। एक टाइम इश्यो आ जासी जिसो अपनी माटी बंजर बन जाएगी और प्राणी जगत में भांत भांत की बीमारियां, रोग बच जाएगा। आपने आस पास देखा तो बहुत सा ईशा कीट जका किसान भाइयों का मित्र कीट है, वे खत्म हो गया। और अब खाद्यान्न का नहीं देखा तो सफाई जहर पैदा होने लाग रही है। इन वास्ते अभी चेतना जरूरी है, नहीं तो एक टाइम इश्यो आसी के भूमि में फसल पैदा होनी बंद हो जासी और मानव जीवन के सागे सागे आखी धरती संकट में आ जासी। अपना वैज्ञानिक भी इन बात पर जोर देवन लाग रहे है कि रासायनिक खेती को लारो छोड़ के और जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का नहीं ध्यान देना पड़ेगा। भाई लोगों, प्राकृतिक खेती में ज्यादा पीसो टको भी कौन लगे और अपनी भूमि भी सुरक्षित रहेसी, पूरा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अब बात आवे के प्राकृतिक खेती होवे की है और प्राकृतिक खेती केवा की ना, तो आज आप जिक्र कर सा प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है, के फायदा है और अपना किसान भाई क्या प्राकृतिक खेती कर सके। इनके अलावा आप जैविक तरीका भी अपना सका। भाई लोगों, प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त कृषि विधि है जबकि प्रकृति के सागे तालमेल बिठा के करीजे। इनमें सिंथेटिक उर्वरक, कीटनाशक या बारिश लागे किसी भी खाद को आपा प्रयोग कोनी करानी। इनके बजाय आपने खेत में ही उपलब्ध गाय को गोबर, गोमूत्र और आपने आसे पासे प्राकृतिक चीजां जिया के जीवामृत, बीजामृत आम पर आधारित खेती करना ही प्राकृतिक खेती है। किसान भैया, ये प्राकृतिक खेती में फायदे के अलावा लागत भी कम होवे और मानव स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव कौन पड़े और माटी को स्वास्थ्य भी सुधरने के सागे सागे माटी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़े। अब बात करें प्राकृतिक खेती का मुख्य सिद्धांत और घटक के होवे, तो भाई लोगों, प्राकृतिक खेती विधि माटी का सूक्ष्म जीव, केंचुआ और जैव विविधता ने पुनः जीवित करने पर केंद्रित है। बात करें जीवामृत के बारे में, तो जीवामृत माटी का सूक्ष्म जीवा ने सक्रिय करने वाली एक प्राकृतिक तरल दवा है। इन्हें देसी गाय के गोबर शू, गोमूत्र, गुड़, दाल ने आटो बना के और पानी के मिश्रण शू घोल तैयार करके फिर तैयार करी जाए। इन तरह ही बीजामृत भी प्राकृतिक खेती वास्ते बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, बीजामृत बीजांत शू पहली बीज ने रोग शू बचाने वास्ते एक सुरक्षात्मक लेप तैयार करी जाए और इन्हें भी देसी गाय के गोबर और पेशाब शू तैयार करना पड़े। भाई लोगों, अपना किसान भाई खेती के सागे सागे पशुपालन भी करे तो गोमूत्र और गोबर आमतौर पर घर में ही मिल जाए। अब बात कर सा मिलीचिंग के बारे में। मिलीचिंग एक ईशो तरीको है जिसू माटी की नमी बनाए रखने खातर और पानी भूमि शू ज्यादा ना उड़े तो इन्हें रोकने वास्ते खेत की सतह पर फसलों का अवशेष, घास फूस या सूखो कचरो बिछा देवा या हरी पत्तियां शू ढक देवा जिसो ज्यादा गर्मी या हवा चालने पर अपनी माटी जल्दी बत्तर को नहीं आवे। इनको एक और भी फायदो है, जे फसल बीजने के सागे सागे पूरे खेत में मिलीचिंग कर देवा तो पानी की बचत तो होवेगी ही। इनके अलावा खेत में खड़ी फसल में आसे पासे खूड गमा खरपतवार भी पैदा को नहीं होवे, वो भी एक फायदो है। तो किसान भाइयों, सब्जियां की फसल के अलावा दूसरी फसलों में भी मिलीचिंग जरूर करनी चाहिए। किसान भाइयों, फसल चक्र के सागे सागे थाने में कई बार अंतर फसल के बारे में भी बताया करा। फसल चक्र माटी की दशा सुधारे भी तरह ही जे अंतर फसल यानी रड़वा खेती करा आपा तो भी आपा ने फायदो है। इनमें आपा एक फसल के सागे दूसरी फसल की बीजांत करा, अंतर फसल में दाल और तिलहनी फसल एक साथ है उगा सका जिसो माटी की उर्वरा शक्ति बढ़े और कई बार एक फसल मौसम या कीट रोग की मार से खराब हो जाए तो अपनी दूसरी फसल जकी रड़वा तरीका से बिजाई करी है व नुकसान की भरपाई कर सके। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती कोई ज्यादा ओखी या खर्चीली खेती कोनी, बहुत बढ़िया है। आपने प्राकृतिक खेती करनी चाहिए तो धीरे धीरे रसायन छिड़काव कम करके

प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करें प्राकृतिक खेती से किसान भाइयों ने के लाभ है, तो किसान भाइयों कम लागत में भूमि सुधार के सागे अच्छी आमदन भी ले सका। अपना किसान भाई बाजार से महंगा उर्वरक और कीटनाशक खरीद के लावे और कई बार तो उत्पादन कम होवे और खर्चो ज्यादा लाग जाए। जे प्राकृतिक खेती कर सा तो जहरीला रसायन खरीदने की जरूरत ही कौन पड़े और अपना खर्चो भी टले। इनके अलावा बात करा तो प्राकृतिक खेती से और रासायनिक छिड़काव बंद करने से अपने किसान मित्र कीट भी सुरक्षित रहसी। अपनो खाद्यान्न तो साफ स्वच्छ और जहर मुक्त तो होवे गई। इनके सागे सागे पर्यावरण ने भी कोई भी या की भी तरिया को नुकसान कोनी होवे। माटी में केंचुआ की संख्या में बढ़ोतरी होने से माटी की जल धारण करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सी। किसान भाइयों बिना जहर को खाद्यान्न भी बाप रहेगो और स्वास्थ्य ने भी कोई नुकसान को नहीं होवे। खाद्यान्न में पौष्टिकता दपाऊगी होवेगी। इनके अलावा प्राकृतिक खेती करण से पानी की बचत भी हो सी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आवेगी। जिया जिया अपनी भूमि रसायन की आदि होगी बिया बिया ही आप धीरे धीरे प्राकृतिक खेती अपना के भूमि की भौतिक दशा सुधार सका और भूमि ने प्राकृतिक खेती को आदि बना सका। और इनकी ज्यादा जानकारी अपने आसे पास आएगा कृषि विशेषज्ञ भी देवता रेवे। अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके भी आप प्राकृतिक खेती की या अन्य खेती से जुड़ी जानकारी ले सका। कोई पीसा टका तो लागे को नहीं। प्राकृतिक खेती के अलावा बात करा पानी बचावन की, तो इन क्षेत्र का मां कम पानी से पाकन वाली फसलों के सागे सागे ज्यादा पानी की जरूरत वाली फसल भी बीजांत करा। पर अब जिया जिया टाइम टपन लग रही है बिया बिया पानी की किल्लत भी होने लग रही है, चाहे वो पीने खातर पानी हो या फिर खेती खातर हो, क्योंकि कई क्षेत्र में पानी ज्यादा ऊंडो हो गयो या फिर खारो हो गयो। तो अब चेतन वाली और सोचने वाली बात आ है कि पानी बचानो किए है, क्योंकि खेती ने भी पानी की जरूरत पड़े और पीने के लिए भी पानी बचानो जरूरी है। इन वास्ते अपना कृषि वैज्ञानिक तो आई राय देवे कि आप बाई फसलों को चुनाव करा जबकि कम पानी में बढ़िया पाक जाए और पानी भी बच जाए। इनके खातर किसान भाइयों फसलों में पानी देने का अलग अलग तरीका भी अपना विशेषज्ञ लोग बतावे कि पानी अपनी आवन वाली फसल के लिए आप किया बचा सका। तो कई तरह की सिंचाई विधियां हैं जका ने अपना के आप खेती करा बिया। तो तीन विधियां हैं जबकि ज्यादा प्रचलित है, जहाँ सतही सिंचाई, फंवारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई। बात करा सतही सिंचाई की, तो किसान भाइयों सतही सिंचाई में आप क्यारियां बना के फिर खाड़े या नक्कई की सहायता से फसल में पानी देवा। जिसु पानी की खपत ज्यादा होवे, कई बार ट्यूबवेल या नहर को पानी कम होवे और आप खाड़े से खुल्लो पानी खेत में देवा, तो ईशू के है कि पानी खाड़ा में या नालिया में ही रह जावे। आधो पड़दो पानी खेत क्यारी में पुगे और पानी भी खराब होवे, क्योंकि कई बार खाड़ा डोली कमजोर होने से पानी बीच में ही खराब होमतो रेवे। इनके अलावा बात करें आप फंवारा विधि से सिंचाई की, किसान भाइयों फंवारा सिंचाई विधि का मां पानी पाइप और नोजल के द्वारा बरसात के रूप में सिंचाई होवे। फंवारा सिंचाई में नोजल से पानी दूर दूर तक अपने खेत में बरसात की तरह पानी की बौछार करके फिर सिंचाई करे। इनके मां नोजल की क्षमता के हिसाब से नोजल की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी तय करी जाए। इनमें एक बढ़िया बात आ है कि पानी को फैलाव आप अपने हिसाब से भी कर सका। इनमें पानी घटानो बधानो अपने हाथ में ही होवे। इनमें आप नोजलों की संख्या भी घटा बढ़ा सका। किसान भाइयों आपने ही क्षेत्र की बात करा तो आपने अठे नोजल की संख्या इतनी कर रखा जिसु पानी की बौछार एक नोजल से दूसरी नोजल तक और एक लाइन से दूसरी लाइन तक पूग जाए। जिसु के हुए कि पानी का जो वितरण है वो समान हुए। अब बात करा आप किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई विधि के बारे में। इन विधि से जल को उपयोग धीमी गति से बूंद बूंद करके अपनी फसल की जड़ा में करा। किसान भाइयों इन विधि का मां कई तरियांगा उपकरण की भी जरूरत पड़े, जगह का मां तीन मुख्य रूप में आप माना तो पहलो भाग एक पंपिंग यूनिट है जो लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर को जलदाब पैदा करे। इनको दूसरो भाग एक पाइपलाइन है और तीसरे भाग की बात करा तो ड्रिप लाइन है, इन पर लगेड़ा ड्रिपर हुए जका शु पानी पौधा करने बूंद बूंद करके टपक तो रेवे। किसान भाइयों इन विधि से पौधा ने जल की पूर्ति लगातार होती रहे जका शु पौधे की बढ़वार और विकास अच्छो होवे। इस पैदावार के सागे सागे फसल की गुणवत्ता में भी बढ़िया बढ़ोतरी होवे। भाई लोगों इन विधि से पानी को जो उपयोग है वो बहुत कम मात्रा में आप कर सका। कई बार हुए कि आप खाड़े से या नक्के से पानी लगा के पानी बर्बाद कर लेवा। जे आप बूंद बूंद सिंचाई विधि से पानी लगावांगा तो पानी की बचत ज्यादा होगी और पानी खराब कम होगा। इनके अलावा आप रसायना को सीमित उपयोग करके और उर्वरकों को खर्चो टाल के इन विधि से जल में घुलनशील उर्वरक वे सीधा पौधे की जड़ा में दे सका, जगह की वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुए। किसान भाइयों आ विधि बागवानी सब्जियां या फिर चौड़ी कतार वाली नकदी फसल जिया कपास गन्ना अंग वास्ते ज्यादा उपयोगी है। तो सगली चीजा को आप जो ध्यान रखा और खेती करा तो आप बढ़िया फायदा उठा सका, बढ़िया पैदावार ले सका। पर अब मैं खेत का नहीं चालू सा। राम राम सा, राम राम।

श्रोता अभी खेत खलिहान कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान किए। उन्होंने रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए गए। इसी उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि लिफ्ट कैनाल परियोजना के तीसरे चरण का पानी अगले 3-4 महीनों में जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि परियोजना का काम लगभग पूरा हो गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृत 4 अतिरिक्त जलाशयों में से फलसू जलाशय में पानी भरने की शुरुआत होने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के लोकार्पण के साथ ही विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के बाद अब यहां एक साथ 12 विमान खड़े हो सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग को वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के लिए 29,86,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से जारी वार्षिक कार्य रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या अब तक किसी भी एक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या में सबसे अधिक है। वर्ष 2023-24 में आयोग को 20,24,000 आवेदन मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने वर्ष 2024-25 में 72 प्रतियोगी परीक्षाओं और 316 साक्षात्कार आयोजित कर विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए 2,538 युवाओं का चयन किया था। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। विभिन्न जिलों में अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 दिन के इस अभियान के दौरान पहले दिन बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जाएगी, वहीं अगले 2 दिन घर घर जाकर पोलियो रोधी दवा की खुराक दी जाएगी। इसी सिलसिले में आज झुंझुनू और जैसलमेर में जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। झुंझुनू के CMHO डॉ छोटेलाल गुर्जर ने शहीद पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि जिले में अभियान के लिए 1,551 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जैसलमेर में भी गड़ीसर चौराहे से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें नर्सिंग कर्मियों और आशा सहयोगियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि सेशेल्स विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हमीनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान वे सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। जिंदगी तू सोच कर उदास मत हो इतना, कुछ और पल ही सही, तेरे नाम ही तो है। खूबसूरत पंक्तियों के साथ रेडियो सखी कृष्णा का प्यार भरा, उमंग भरा नमस्कार।

सखियों, बिना कल्पनाओं के, सपनों के ये जीवन बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। कल्पनाओं का, ख्यालों का होना बहुत जरूरी है।

ख्याल हमें सृजन की ओर ले जाते हैं। ये ख्याल अचानक ही तो आते हैं और एक मिनट में चले भी जाते हैं, और एक मिनट में ऐसा लगता है मानो सब कुछ बदल गया है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। ख्याल गहराई से सोचने का अवसर देता है, यह नए विचारों अनुभवों का सकारात्मक दृष्टिकोण माना जाता है, जो अनमोल संगम है, जो हर पल हमें जीना सिखाता है, कुछ न कुछ नया सिखाता है, एक ऐसी दिशा, एक ऐसी राह जिसमें हम ख्यालों में हर समय डूबे रहते हैं, और कभी कभी सामने वाले को देखकर कुछ अलग ही ख्याल आ ही जाते हैं।

सखियों, ये ख्याल तो कभी कभी आ ही जाते हैं और आते ही व्यक्ति का मन बिल्कुल बदल जाता है। ख्याल आता है कि कश्मीर घूम आए, बस दो या तीन दिन सोचते हैं और गुजरते ही टिकट बन ही जाती है। और कभी कभी व्यक्ति ख्यालों में किसी के इस तरह डूब जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता, और ये ख्याल न जाने उन्हें कहाँ ले जाता है। फिर न सुध रहती है न होश, बस डूबे रहो हर समय ख्यालों में।

सखियों, कभी कभी ख्याल हमें कवि या लेखक बना ही देता है, जो हर समय बस सोचने का ही काम करता है, दिमाग कहीं और चलता ही नहीं। और किसी किसी का तो पूरा जीवन केवल ख्यालों के नाम ही होता है, वो डूबे ही रहते हैं। कभी कभी ये ख्याल आता है कि काश मैं पंछी की तरह उड़ान भरकर आसमान में उड़ता, तो कभी ये ख्याल आता है कि मैं अभी पंछी ही बना रहता या कहीं घूमने निकल जाता। लेकिन व्यक्ति की सफलता ख्यालों से मिल ही जाती है। मानसिक शांति का नाम है ख्याल। एक नई मंजिल, एक नया रास्ता इंतजार कर रहा होता है। ये ख्याल हमारी सोच को ही बदल देता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनों, आधुनिक दौर हमारे लिए तकनीकों का युग है, आसान भी है। इस युग में घर के काम, बाहर के काम बहुत आसान हो गए हैं केवल मोबाइल फोन द्वारा। लेकिन परेशानियां भी तो बहुत हो गई हैं। हमेशा जागरूक होकर अनहोनी से बचें। चलते समय मोबाइल फोन का उपयोग कम करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जहां भी आप काम करते हैं वहां मानसिक शांति बनाए रखें। हमेशा कुछ नया सीखते रहें। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर नई नई जानकारी लेते समय सावधान रहें। ऑनलाइन खरीदारी करते समय चीज़ों की जांच पड़ताल कर लें। कहीं बाहर जा रहे हैं तो अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर ना बताएं। अनजान व्यक्ति को जाने बिना अधिक लगाव भी ना बनाएं। फ्रॉड लोगों से दूर रहें और फ्रॉड ईमेल से भी बचें। हमेशा हर चीज़ की जानकारी रखें। सफ़र में अधिक विश्वास अनजान पर मत करें। जिंदगी के बहुत थोड़े से हिस्से को ही जानकर हम रह जाते हैं कि बस हमने सब कुछ जान लिया। जिंदगी के सारे पहलुओं को पूरी गहराई से जानने का प्रयास करें। जिंदगी हमारी है, सावधानी भी हमें ही रखनी होगी।

सखियों, सतर्क और सावधान रहने के लिए ज़रूरी है अपने धैर्य को बनाए रखें। अगर हम अपने धैर्य को खो देंगे तो हड़बड़ाहट में गलतियां कर सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब भी कुछ घटना हमारे साथ घट जाए तो घबराएं नहीं, हिम्मत रखें। समस्याएं सभी के साथ होती हैं और अपने आसपास के वातावरण, समाज, कार्यक्षेत्र पर हो रहे गलत काम को हमेशा रोकें। यही है सतर्कता। अपने कानूनों के प्रति, अधिकारों के प्रति लड़ना, यही है सतर्कता। जागरूक रहें और समाज में घट रही घटनाओं का, वातावरण पर में जो माहौल है उस पर नज़र रखें और गलत के खिलाफ हमेशा बोलने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, ताकि इस समाज को, देश को एक अच्छे भावी नागरिक मिल सकें।

सखियों, गीत से पहले हमारी बातें हो रही थी सावधानी और सतर्कता के बारे में। होशियार होना कहाँ गलत है? आज की इस आधुनिक युग में जहाँ सुविधाएं हैं, काम आसान है, वहाँ चालाकियाँ भी तो हैं। बहुत अनजान से हम बने रहते हैं और सामने वाले से धोखा खा लेते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है और हमारा सीधापन भी एक कारण बन सकता है, और बिना जानकारी के हम बहुत कुछ खो भी देते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे आपसे कि हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखें, उसको डगमगाने ना दें, अपने हौसले को बनाए रखें और हर तरफ नज़र रखें, जानकारी रखें। बस आप अपना बचाव खुद ही कर सकते हैं।

सखियों, आए दिन तनाव और छोटी छोटी बातों को लेकर घबराहट, चिड़चिड़ापन जिंदगी का सुख चैन खो देता है। लेकिन भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर तनाव का, चिंता का कोई असर नहीं होता। वो हर पल हर समय मस्त रहते हैं, क्योंकि उनके पास हंसी की फुहारें हैं जिससे वे तरोताज़ा रहते हैं। और हंसना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, तन मन दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं हंसना रक्त संचार की क्रिया को बेहतर बनाता है, रोग हमसे कोसों दूर रहने लगते हैं। हंसना शरीर के लिए एक व्यायाम है जो बहुत ज़रूरी है। हंसने वालों को भूख प्यास भी बहुत अच्छी लगती है। और सामने वाला जब हंसाने वाला हो तो व्यक्ति थकान भूल जाता है, अपने दुख दर्द भूल जाता है। हंसने वालों के साथ हमेशा लोग बहुत से जुड़ जाते हैं। एक मुस्कुराहट जीवन को तरोताज़ा कर देती है, तनाव को ख़त्म कर देती है। सखियों, भूल जाइए सब परेशानियाँ, बस हंसना सीखिए और हंसना सिखाइए।

सखियों, आजकल तनाव भरे दौर में सभी हंसना भूल गए हैं। वक्त ही नहीं है, काम भी बहुत है। किसी को सखियों का, दोस्तों का गपशप के लिए बैठना, हंसी के बुलबुलों को छोड़ना पसंद ही नहीं है। और कुछ लोग घंटों तक इसे माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। हंसना क्यों भूल गए हैं? क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सखियों, जिस घर में एक भी व्यक्ति हंसाने वाला हो, बस उस घर का तनाव तो समझो चुटकियों में चला ही गया। आजकल कितने ऐसे चैनल हैं, टीवी शोज हैं, जो है केवल हंसाने के लिए चल रहे हैं। उनसे फ़ायदा भी है, क्योंकि हंसी में छुपा है सेहत का राज। जब भी उदास हो, बस हंसी भरे चुटकुले सुने या कॉमेडी शो देखें, आप भी हो जाएंगे बिल्कुल तरोताज़ा और खुश।

सखियों, गर्मियों का मौसम है, अपने चेहरे को सुंदर बनाए रखें, तरोताज़ा बनाए रखें। इसके लिए जब भी बाहर निकलें, अपने चेहरे को, सर को ढककर निकलें और पानी खूब पिएं ताकि आप रहें स्वस्थ। और चलते चलते एक खूबसूरत गीत आपकी नज़र।

बातों के इस खूबसूरत सफर को यहीं पे विराम देंगे और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक अपने सखी कृष्णा को दे विदा। नमस्कार।

0: Ghebreyesus has said, contact tracing is reaching more people and that increasing numbers of patients are recovering and returning home. However, he warned that the outbreak is far from over. Back home, the IMD has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम

0: में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोगों परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्य

0: मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु

0: ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्क फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करते हैं गजनी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ें दी है बेनी दयाल और श्रेया घोषाल ने। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है AR रहमान ने।

लीजिए अब सुनते हैं देवदास फिल्म से अगला गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की मिलजुली आवाजों में। गीत को लिखा है नुसरत बद्र ने और संगीत इस्माइल दरबार का है।

0: कुछ तो जवाब दोगी ना।
1: श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रही हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में पाप फिल्म से। गीत को लिखा है अमजद इस्लाम ने और संगीत शाही का है।

लीजिए अब सुनते हैं मुन्ना भाई MBBS फिल्म से ये गीत श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की मिलीजुली आवाज़ों में। राहत तिंदोरी के लिखे इस गीत को संगीत में सजाया है अनु मलिक ने, तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं इश्क विश्क फिल्म से। आवाज़ अलका याग्निक की है। समीर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं। अब खबरें नश्र होंगी।

वज़ीर-आज़म मोदी अपने दौरे के दौरान सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। आज उनके प्रोग्राम में बोटेनिकल गार्डन में शजरकारी की तकरीब में शिरकत और सेशल्स साहली मुहाफिज दस्ते के अड्डे का दौरा शामिल है। भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी, सकाफती और अवामी रवाबित पर मबनी देरीना शराकत दारी है। बहर हिंद खित्ते में एक अहम बहरी हमसाया होने के नाते सेशल्स को भारत के महासागर विजन और आलमी खित्ते जुनूब के तई वाबस्तगी में खास अहमियत हासिल है। ये दौरा भारत और शेसल के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती के अज़्म का अदा करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के मुश्तरक अज़्म को तकवीत फराहम करता है। सेशल्स ने अक़वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तक़िल रुकनियत की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोदी की सेशल्स आमद से कबल सेशल्स के वज़ीर ख़ारजा बैरी फौरे ने कहा कि मौजूदा आलमी निज़ाम और बिलाक़वामी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि ये मौजूदा दौर के हक़ायक़ की बेहतर तर्जुमानी कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत अपनी कसीर आबादी, बढ़ते हुए आलमी असर व रसूख, अमन कायम करने की कोशिशों, बहरी सलामती और कसीर जहती सफारतकारी में अहम रोल की वजह से सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का पूरा मुस्तहिक है। जनाब बहरी फौरे ने मजीद कहा कि सेशल्स अक़वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उसका यकीन है कि भारत की शमूलियत आलमी तवाज़ुन को मजबूत बनाने और दुनिया में अमन के फरोग में मददगार साबित होगी। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की कुव्वत छोटे, बहुत छोटे और मुतवसित दर्जे के सनअती इदारों MSME की दैन में मुसमर है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के इन इदारों के दिन के मौके पर एक तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कही। नायब सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि मुल्क की मजमू बरामदात में इन इदारों का हिस्सा लगभग 50% है और ये बराबर अपना आला मैार बरकरार रखे हुए हैं। जनाब सी पी राधाकृष्णन ने सनअतकारों पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं ताकि माल के मैार और पैदावार में मजीद बेहतरी लाई जा सके और इसमें इजाफा हो सके। ज़रई और डब्बाबंद खुराक प्रोडक्ट्स की बरामदात से मुतालिक तरक्याती अथॉरिटी अपेडा ने मध्य प्रदेश के जोग्राफियाई शरा GI टैग वाले रेवा सुंदरजा आमों की पहली तजारती खेप मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचा दी है। तजारत और सनत की वजारत के मुताबिक ये इकदाम आलमी मंडी में भारत के मुनफरिद ज़रई प्रोडक्ट्स को फ़रोग देने की जानिब एक अहम कदम है। वजारत ने कहा कि इस बरामदी खेप में 1 मैट्रिक टन आला मैार के GI टैग वाले रेवा सुंदरजा आम शामिल थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम मोदी की क्यादत की ये कहते हुए तारीफ की है कि भारत ने खातिर खा इकतसादी तरक्की की है और वह आलमी सतह पर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस में खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अमरीका के करीब तरीन दिफाही शराकत दारों में समझती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने एक ऐसे मुल्क की क्यादत की है जो इकतसादी तौर पर मजबूती के साथ तरक्की कर रहा है और लगातार एक मौसर आलमी ताकत बनता जा रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि वजीर आजम मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात काफी करीबी हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए ये एक अहम बात है। अमरीका के नायब सर JT वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी जारहियत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान अमरीका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर फौजी हमलों के चंद घंटे बाद सामने आया है। एक्स पर एक पोस्ट में JT वेंस ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और अमरीका ने भी इसकी मुकम्मल पासदारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआहदे से मुतालिक किसी भी इख्तलाफ को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया तो उसका जवाब फौरी कार्रवाई से दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिजाइल और ड्रोन मराकज के अलावा साहली रडार तनसीबात को निशाना बनाया। अवामी जमहूरिया कांगो में 1200 से ज्यादा अफराद के इबोला में मुबतला होने की तस्दीक हुई है। मई के वस्त से वहां यह मर्ज फैला हुआ है। मुल्क के अवामी सेहत से वाबस्ता हुक्काम के ताजा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 321 अमवात समेत 1203 मामलात की तस्दीक हो चुकी है। अब तक 148 मरीज रूबा सेहत हो चुके हैं जबकि 419 को या तो अलग थलग रखा गया है या

अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के अहलकारों ने 77 मौत की तस्दीक की है और 265 मुशतबा मरीजों की निशानदेही की है। इसी दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि और ज्यादा से ज्यादा अफराद से राबता कायम किया जा रहा है, बेहतर होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है और अपने घर वापस आ रहे हैं। शमाल मशरकी खित्ते और मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज से गुना का 3 रोजा दौरा शुरू कर दिया है, जहां वो मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर ने आज सुबह सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायत से मुतालिक दरख्वास्तें भी वसूल की। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कंजा गांव में 700 पौधे लगाए। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि शिमाली बहरे अरब के मजीद कुछ इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालय खित्ते सिक्किम में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शमाल मशरक के कुछ इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया के फुलरटन में भारत की देविका सिहाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका ने खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेट में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्बरमैन को 23-21, 21-11 से हराया। फुटबॉल

0: में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्बरमैन को 23-21, 21-11 से हराया। फुटबॉल के फीफा आलमी कप में आज मिस्र और ईरान का मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने एक एक गोल किया, जिसके नतीजे मिस्र नॉकआउट मरहले में पहुंच गया और वो पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। अगले दौर के लिए मिस्र का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप जी के एक दूसरे मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1-5 से हराया और वो अपने ग्रुप में सरे फहरिस्त है। भारत बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। उसने जापान के शहर में ग्रुप सी में अपने इफ्तिताही मैच में कजाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबाह समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी मुल्क करार दिया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी साथी समझता है, जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। भारत की देविका सिहाग और रौनक चौहान कैलिफोर्निया में अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और फुटबॉल के फीफा आर्मी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 से बराबर रहा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद।

अभी आप समाप्त कर रहे थे मेरी पसंद प्रोग्राम में ताल फिल्म का नगमा। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीत।
1: इंद्रजीत की सभा भरी थी।

ಸತ್ತವರು ಅಣ್ಣನ ಕರೆ ಪ್ರಚಾರಿ ಏ ಪ್ರಿಯ ಬೋಲ್ ಬೋ

अभी आप सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में हरियाणवी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमों का प्रोग्राम। पहला नगमा जुल्मी फिल्म से है। आवाज़ें हैं उदित नारायण और आशा भोसले की।

अभी आप सब समाप्त कर रहे थे जिंदा दिल फिल्म का नगमा। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। आइए सुनते हैं जख्मी दिल फिल्म का नगमा। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

आइए अब सुनते हैं यात्रा फिल्म का नगमा, आवाजें हैं अलका अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश प्यार का तराना फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले, एसपी बाला सुब्रमण्यम और उदित नारायण की।
1: लव लेटर, लव लेटर।

Love.

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नश्र होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबाह समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी मुल्क करार दिया। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी साथी समझता है, जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। भारत की दीविका सिहाग और रौनक चौहान कैलिफोर्निया में अमरीकी ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अपने दौरे में जनाब मोदी सेशल्स से के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि इस दौरे में वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम का शर्फ हासिल करेंगे। वजीर आजम सेशल्स में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से भारत और सेशल्स के दरमियान खसूसी दोस्ती परवान चढ़ी है और ये बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक वसीले का काम अंजाम दे रही है। आज वजीर आजम के प्रोग्राम में बोटेनिकल गार्डन में शजरकारी की तकरीब में शिरकत और सेशल्स साहिली मुहाफिज दस्ते के अड्डे का दौरा शामिल है। भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी, सकाफती और अवामी रवाबित पर मबनी देरीना शराकत दारी है। बहर हिंद के खित्ते में एक अहम बहरी हमसाया होने के नाते सेशल्स को भारत के महासागर विजन और आलमी खित्ते जनूब के तहत वाबस्तगी में खास अहमियत हासिल है। ये दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती के अज़्म का यादा करेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के मुश्तरक अज़्म को तक़वियत फराहम करेगा। सेशल्स ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तक़िल रुकनियत की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने मोदी की सेशल्स आमद से कबल वज़ीर ख़ारजा बैरी फौरे ने कहा कि मौजूदा आलमी निज़ाम और अक़वामी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि ये मौजूदा दौर के हक़ायक़ की बेहतर तर्जुमानी कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत अपनी कसीर आबादी, बढ़ते हुए आलमी असर रसूख, अमन कायम रखने की कोशिशों, बहरी सलामती और कसीर जहती सफारतकारी में अहम रोल की वजह से सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का पूरा मुस्तहिक है। जनाब बैरी फौरे ने मजीद कहा कि सेशल्स अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है और उसका यकीन है कि भारत की शमूलियत आलमी तवाज़ुन को मजबूत बनाने और दुनिया में अमन के फरोग में मददगार साबित होगी। ज़रई और डब्बाबंद खुराक प्रोडक्ट्स की बरामदात से मुतालिक तरक्याती अथॉरिटी अपेडा ने मध्य प्रदेश के जोग्राफियाई शनाख्त GI टैग वाले रेवा सुंदरजा आमों की पहली तजारती खेप मुतहदा इमारात को पहुँचा दी है। तजारत और सनत की वजारत के मुताबिक ये इकदाम आलमी मंडी में भारत के मुनफरिद ज़रई बरामदात को फ़रोग देने की जानिब एक अहम कदम है। वजारत ने कहा कि इस बरामदी खेप में 1 मैट्रिक

टन आला मेयार के जीआई टैग वाले रेवा सुंदर आम शामिल थे। शिमाल मशरकी खित्ते और मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज से गुना का 3 रोजा दौरा शुरू कर दिया है, जहां वो कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर ने आज सुबह सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायत से मुतालिक दरखास्तें भी वसूल की। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कंसा गांव में 700 पौधे लगाए। भारत की बहरिया का तरबियती जहाज INS सुंदरशिनी अमरीका में पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर मैरीलैंड पहुंचा है। वजारत दिफा का कहना है कि INS सुदर्शिनी के बाल्टीमोर पहुंचने से जाहिर होता है कि भारत मालामाल सकाफती विरसे का मालिक है और अमरीका और भारत दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज के दरमियान गहरी दोस्ती और ताउन पाया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्क रूबियो ने वजीर अजम मोदी की क्यादत की ये कहते हुए तारीफ की है कि भारत ने खातिर खा इकतसादी तरक्की की है और वो आलमी सतह पर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस में एक खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अमरीका के करीब तरीन दिफाही शराकत दारों में समझती है। उन्होंने कहा कि वजीर अजम मोदी ने एक ऐसे मुल्क की क्यादत की है जो इकतसादी तौर पर मजबूती के साथ तरक्की कर रहा है और लगातार एक मुअसर आलमी ताकत बनता जा रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि वजीर अजम मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात काफी करीबी हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए एक अहम बात है। अमरीका के नायब सदर GD वैंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी जारहियत का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान अमरीका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर फौजी हमलों के चंद घंटे बाद सामने आया है। एक्स पर एक पोस्ट में जेडी वैंस ने कहा कि ईरान ने जगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और अमरीका ने भी इसकी मुकम्मल पासदारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआहदे से किसी भी इख्तलाफ को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया तो इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिजाइल और ड्रोन मरकजों के अलावा साहिली रडार तंसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक एक कार्गो जहाज पर हमला जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी था। उसने मजीद कहा कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज खित्ते में मौजूद रहेंगी। इत्तलात के मुताबिक कार्गो जहाज पर खलीज ओमान के करीब हमला किया गया, जिसके बाद दुनिया की मसरूफ तरीन तवानाई और बहरी तजारत गाहों में से एक की सलामती के हवाले से ताज़ा तश्वीश पैदा हो गई है। अवामी जमहूरिया कांगो में 1200 से ज्यादा अफराद के इबोला में मुबतला होने की तस्दीक हुई है। मई के वस्त से वहां यह मर्ज फैला हुआ है। मुल्क अवामी सेहत से वाबस्ता हुक्काम के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 321 अमवात समेत 1203 मामलात की तस्दीक हो चुकी है। अब तक 148 मरीज रूबा सेहत हो चुके हैं, जबकि 419 को या तो अलग थलग रखा गया है या उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के अहलकारों ने 77 अमवात की तस्दीक की है और 265 मुशतबा मरीजों की निशानदेही की है। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि और ज्यादा से ज्यादा अफराद से राबता कायम किया जा रहा है, बेहतर होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है और अपने घर वापस आ रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि शिमाल बहर अरब के मजीद कुछ इलाकों गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने बिहार छत्तीसगढ़ साहली आंध्र प्रदेश साहली कर्नाटक तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल और शिमाल मशरक के कुछ इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया के फुलर्टन में भारत की दीविका सिहाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका ने खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाड़ी री कोगुंजी को सीधे सेट में 22-20 21-19 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्बरमैन को 23-21 से हराया। भारत बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फुटबॉल के फीफा आलमी कप में आज मिस्र और ईरान का मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने एक एक गोल किया, जिसके नतीजे में मिस्र नॉकआउट मरहले में पहुंच गया और वो पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। अगले दौर के लिए मिस्र का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप जी के एक दूसरे मैच में बेल्जियम ने

0: न्यूजीलैंड को 1-5 गोल से हराया और वो अपने ग्रुप में सर फहरिस्त है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबहा समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी मुल्क करार दिया। अमरीका के वजीर खाजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी साथी समझता है, जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। भारत की देविका सिहाग और रौनक चौहान कैलिफोर्निया में अमरीकी ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का। श्रोताओ, हम जहाँ भी रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हमें जीवन जीने के लिए कुछ पाने के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। हमारे जीवन में कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी जीवन समस्याओं से भरा हुआ लगने लगता है, तो मानो कभी जीवन ये जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है जीवन और लंबा हो। साथ कुदरत हमारे विचारों को देखती है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारी एक्टिविटी को, हमारे क्रियाकलापों को, हमारे व्यवहार को कहीं न कहीं देखती रहती है। हमारे मन में सकारात्मक विचार होंगे, अच्छे भाव होंगे, एक दूसरे के प्रति मदद का, एक दूसरे की सहायता का हमेशा अगर हम मन में विचार रखेंगे तो हमारा जीवन सकारात्मक के रास्ते पे चलेगा। और जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आएगी, उनका संघर्ष करना यदि हम सीख लेंगे, तो यकीन मानो सारी की सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। मित्रों, जीवन में संयम रखना बहुत जरूरी

जरूरी है। हरिवंश राय जी ने लिखा है कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी यह सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें भला बुरा क्या। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं दुनिया के इस मेले में, हर एक यहां पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का पक्का बोचंका सा, आ गया कहां क्या करूं कहां जाऊं किस जगह। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, साथियों कोई यह सोचे कि उसका जीवन कभी भी समस्याओं से नहीं गिरेगा या किसी के जीवन में कोई समस्या कभी आएगी नहीं तो यह गलत है। जिंदगी जो हमें मिली है इस जीवन को जीने के लिए, जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे ब्रेकर को पार करना है। बड़े ही इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, संयम के साथ इस जीवन को जीना है।

सुताओ। बात हम कर रहे थे इंसान के जीवन की। साथियों, हम जहाँ रहते हैं, जिस भी परिवेश में हम रहते हैं, हमारे देश में, हर राज्य में अपनी अपनी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इस वक्त कहीं पर तेज आंधी, गर्मी, कहीं पर कम तापमान, बरसात, कहीं पर बर्फ, तो कहीं तपते रेत के धोरे। सुताओ, हमारे राजस्थान की अगर बात करें, तो राजस्थान के साथ एक शब्द ऐसे जुड़ता है जो वो राजस्थान के साथ साथ हमारे देश की गरिमा को भी बढ़ाता है। रंगीला राजस्थान। साथियों, अगर राजस्थान की भी बात करें, तो राजस्थान की भी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। राजस्थान की धरती के दो रूप, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, जहाँ पर समतल जमीनों के साथ साथ बड़े बड़े रेत के धोरे, तो वहीं दक्षिणी और पूर्वी भाग की बात करें तो चारों तरफ हरियाली, अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान की महिमा को और अधिक खूबसूरत बनाती है। प्रदेश के पहाड़ों, ढाणियों और धोरों के ये गहने प्रकृति का एक खूबसूरत और अनमोल उपहार है। मित्रों, राजस्थान

की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ यहाँ की वीरता, यहाँ का इतिहास और इसके साथ साथ देश हित में यहाँ के वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर खुद को राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुर्बान कर दिया। वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं की, नारियों की जो त्याग की भावना यहाँ की, राजस्थान की, वो भी कम नहीं है। साथियों, राजस्थान जो पूरे विश्व में

जो त्याग की भावना यहाँ की राजस्थान की वो भी कम नहीं है। साथियों, राजस्थान जो पूरे विश्व में आवभगत और मान मनोहार के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के किले, दरगाह और धार्मिक मंदिर, दरगाह सब विश्वविख्यात हैं। किसी भी तीज त्योहार के मनाने में राजस्थान की जो परंपराएं हैं वो भी कहीं कम नहीं है। वैसे भी हमारा देश तीज और त्योहारों का देश माना जाता है। अनेक प्रकार के मेलों का आयोजन, रक्षाबंधन, गणगौर, होली, दीपावली, इन सब त्योहारों में राजस्थान की जो महिमा है वो किसी से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती गीतों में गाई जाती है।

उदित नारायण, एलकाई अग्निकुमार सानू और साथियों की आवाज़ में हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वतः बात हम कर रहे थे रंगीले राजस्थान की, और इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं राजस्थान के चूरू की। स्वतः चूरू थार के रेगिस्तान के किनारे पर सुनहरी रेत के टीलों के बीच बसा एक शहर है जिसे थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चूरू अपनी शानदार हवेलियों और भीति चित्रों से, इसके साथ साथ राजस्थान की वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। चूरू उत्तरी राजस्थान के ऐतिहासिक शेखावाटी क्षेत्र का एक हिस्सा है। वास्तुकला पर्यटकों के लिए यह एक विशेष आकर्षण का केंद्र है।

साथियों, यूँ तो राजस्थान के सभी ज़िले अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, मगर चूरू बीकानेर की तरह मसालों के लिए स्वादिष्ट चाट और पापड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। मौसम और जलवायु की दृष्टि से चूरू राजस्थान का सबसे गर्म, ग्रीष्म काल में सबसे अधिक गर्म रहता है, और वहीं सर्दी के मौसम में यहाँ का तापमान राजस्थान में सबसे कम रहता है। गर्मी में यहाँ बेताशा गर्मी पड़ती है, तो वहीं सर्दी में जबरदस्त ठंड। साथियों, चूरू की ताल छापर झील प्रसिद्ध है। इसके साथ ही चूरू जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, ऐतिहासिक किलों की अगर बात करें तो रतनगढ़ में यह भी देखने को मिलता है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं। सालासर बालाजी, जो हनुमान जी का मंदिर है सालासर गांव में, यह मंदिर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में माना जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए दूर दूर से सालासर बालाजी का माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। अप्रैल और अक्टूबर माह में यानी चैत्र मास और अश्विन मास की पूर्णिमा को लाखों की संख्या में भक्तगण देश विदेश से सालासर बालाजी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। रेत के टीलों और काले हिरणों के अभ्यारण्य के लिए भी चूरू प्रसिद्ध है। चूरू जिला अपनी हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। साथियों, ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है। ताल छापर अभ्यारण्य की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से काले हिरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य जीव जैसे चिंकारा, लोमड़ी, जंगली बिल्ली के साथ साथ पक्षियों की भी कई प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है।

आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। फिल्म का नाम था जीने की राह। सुदो कार्यक्रम युववाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना। श्रोताओ, बात हम कर रहे थे चूरू की। चूरू में जो अभयारण्य है उसके बारे में। साथियों, इसके साथ साथ हर इंसान के लिए एक चीज, एक बात का होना जरूरी है, वो है इंसान के मन में दया का भाव। इंसान का इंसान से हो, पशु पक्षी से, जीव जंतुओं से लेकर प्रकृति वनस्पति सब चीजों पर एक दया का भाव मन में होना बहुत जरूरी है। स्वतः जीवों के ऊपर दया रखना इंसान के मन को पवित्र और निर्मल बनाता है। सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ना, हर व्यक्ति के साथ, दूसरे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना, मान सम्मान और इज्जत देना बहुत जरूरी है। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि हम दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, कोई बर्ताव करते हैं जो हमें शायद खुद पर कोई करे तो वो पसंद ना आता हो। साथियों, इसलिए इस बात को हमेशा मन में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिसे हम खुद पसंद ना करते हों। इंसान का व्यक्तित्व, इंसान का चरित्र इंसान को महान बनाता है। जीवन में हम जहां भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, अपने मुकाम की तरफ चलते हैं, अच्छा व्यवहार, पॉजिटिव सोच और अच्छा चरित्र आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करता है।

मेरे हम सफ़र, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओ, कार्यक्रम युववाणी को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। उत्सवताओं कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं हम आपको फिल्म निकाह का ये गीत। आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों की।

यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना। श्रीपाल को आज का युववाणी कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के ठीक 6 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर कार्यक्रम सुनिएगा सिराय की, 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

संध्या 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे जानकारी। ग्वार के लिए भूमि सुधार, बेल वाली सब्जियों की देखभाल, पशुओं में मुंहपका और खुरपका रोग, इसके अलावा उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। आज चौपाल में जानकारी देंगे मुकेश चावरिया।

संध्या 7:45 पर कुछ भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म की जानकारी और कुछ गीत।

स्पोर्ट्स कैन, ये कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। समाचार संध्या आप सुना करते हैं रात्रि 8:45 पर।

रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

स्वतःकल प्रातः 5:50 पर हमारी सभा आरंभ होती है, जिसमें 6:10 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम वंदना। 6:45 पर प्रातः वक्त रहेगा चिंतन का।

ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम सिराय की।

0: लग पिया। वाला वो शहजादे दे महल लगे गए। शहजादा रूपल को अपने महल घेन आया, जिथा उनका बहुत स्वागत थिया। बादशाह ते रानी अपने फिट्टे हुए शहजादे को देख के बहुत खुश थी गए। कुछ देर बाद लोगों को पता लगा कि उयो छेरे जैको बुढ़ी अपने नाल चाह गई है। रूपल को पता लगा कि हुंदे असली माँ प्यो कौन हिन। वो वल उना को मिली। रूपल दे माँ प्यो अपनी धी को जवान देख के बहुत खुश थे, तो उन्होंने रूपल को दसा कि वो बुढ़ी भी मर चुकी है। उन्होंने डुआ ने काज करने का फैसला किया। वल बादशाह ने शहजादे ते रूपल की शादी का ऐलान कर दिता, ते बहुत धूमधाम नाल नुआ का काज करवा दिता। ठीक वड्डी दावत भी की। हिंदे बाद शहजादा ते रूपल हंसी खुशी अपनी जिंदगी बितावण लग पे।
1: सुनहरी वाल, हुणे तुसां एक कहानी सुनदे पए हवे। कहानी सुनावण वाले हन वीरेंद्र पुंजानी। मेरा ख्याल है कहानी तुहाकू चंगी लगी हो सी। सराइकी प्रोग्राम सुनण आलियो, आधे ने जिथे ही न पूजे रवि उथे ही पूजे कवि। तुसां समझ गए हो सो कि हुण मैं तुहाकू सुनवेंदी पई हाँ काव्य पाठ। जी हाँ, सुनेंदे हाँ ज्योति चंद्र दा काव्य पाठ।
2: सारे सिराई की भीणी भिरावां को राम राम ते बहुत सारा प्यार। मैं तुहाडी अपनी ज्योति वे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6:30

0: होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। HPCL की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल, प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026, उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल और ODOP कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस साल 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दिए जाने का ऐलान किया। श्री शर्मा ने पात्र उद्यमियों को रीको के भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण और सब्सिडी के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है। 33 लाख से अधिक MSME के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
2: तो मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक MSME उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में, वो आपके सामने है। उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके।
1: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री KK विश्नोई भी मौजूद रहे। MSME दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह ने प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कामों का सकारात्मक संदेश दिया। राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा। HPCL की ओर से पहले चरण में राज्य भर में 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई HPCL और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी गई। इसके लिए प्रदेश में 304 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जहां रिटेल आउटलेट्स के लिए HPCL 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 31 जुलाई तक इस बारे में नई नीति तैयार की जाएगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि परियोजना के तहत सरकारी भूमि HPCL को लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सकें। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल का तीसरे चरण का काम अंतिम दौर में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 3-4 महीनों में इसका पानी जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि इस परियोजना में लंबे समय से चली आ रही तकनीकी और अन्य अड़चनों को दूर कर दिया गया है, जिससे इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने बताया कि गर्मियों में पेयजल संकट से राहत के लिए 4 अतिरिक्त जलाशयों को भी मंजूरी दी गई थी। फलसूंड जलाशय में पानी भरना शुरू हो चुका है और बाकी जलाशयों में भी जल्द पानी पहुंचेगा।
3: सारे अवरोधों को दूर करने

0: के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। तो जिस तरह से क्लूजर्स आते हैं और पानी का संकट, डिमांड गर्मी में ज्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गाँव की, ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा।
1: देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से कल राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य आवागमन स्थलों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएगी। राज्य के टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप आवश्यक रूप से पिलाएं।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए आज कई स्थानों पर आशा सहयोगिनियों और नर्सिंग विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री 3 दिन की यात्रा पर आज सेशेल्स पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की उत्सुकता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 सालों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे फायदा पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके मेहनताने का ज्यादा हिस्सा मिलेगा और लोगों को सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी अभी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन कल नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और

0: औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। इसके तहत कुल 269 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर इन व्यवस्थाओं को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों से प्री मानसून की गतिविधियों की सक्रियता लगातार बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ ज़िले अब भी तेज गर्मी और उमस के प्रभाव में हैं। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार जताए हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। आज 27 जिलों में अंधड़ और बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज बांसवाड़ा जिले के कई जगह तेज बरसात हुई। उधर सिरोही जिले की पिंडवाड़ा और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आबूराज में अच्छी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। उधर बालोतरा और सवाईमाधोपुर में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 29 जून को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बिरला सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में भामाशाहों और प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी समारोह में शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। HPCL की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण शर्मा ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, जल संरक्षण, कृषि, सामाजिक गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम जारी है। आइए जानते हैं जिले के बीते माह की कुछ प्रमुख गतिविधियों के बारे में आज की चिट्ठी में। जिले में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इन दिनों शहरी सेवा शिविर लगाए गए हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। जिले की सभी 10 नगर निकायों में ये शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में मकानों के पट्टे, नामांतरण, विभिन्न प्रमाण पत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों का निस्तारण किया जा रहा है। शिविर में लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। जिले में हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जल संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां हुई। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम चूरू के प्रसिद्ध सेठानी के जोहड़े में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व पर चर्चा की गई। अभियान के दौरान जिले में 3,526 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले में उत्साह का माहौल रहा। जिला स्तरीय समारोह स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जिला स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। आयोजन आयुर्वेद विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उनके जीवन और योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके विचारों और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में

0: जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष चूरू जिले में 1624 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 177 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। चयनित वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह का माहौल है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। जिले में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर, चूरू, बीदासर और सुजानगढ़ क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में कमी आई है। कुछ स्थानों पर हालांकि जलभराव की स्थिति बनी, जिसे प्रशासन ने समय पर नियंत्रित किया। बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी तेज कर दी है। जिले के किसान मूंग, मोठ, ग्वार, चवला और बाजरा की बुआई में जुट गए हैं। कृषि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक लगभग 40% बुवाई हो चुकी है। किसान अब अच्छी मानसूनी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में 10 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है। इस योजना में 300 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। महिला सुरक्षा और सहायता से जुड़े मामलों में भी जिले में काम किया जा रहा है। सखी केंद्रों में प्राप्त अधिकांश मामलों का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार पुलिस थानों में संचालित महिला सहायता प्रकोष्ठों में प्राप्त मामलों का भी निस्तारण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिले में लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1990 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 4990 परिवारों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। योजना के माध्यम से कई परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। जिले में मुहर्रम का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। चूरू शहर में विभिन्न स्थानों से ताजिए निकाले गए। जुलूस मुख्य बाजारों से होकर गुजरे। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और शरबत की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमिया ने भिड़ी सेवा में देवण सारू रैंप पोर्टल रो अनावरण करियो। HPCL का न्यू 400 करोड़ रुपया रो निवेश करने राज्य में 300 नवा पेट्रोल पंप खोदया चाहला। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1 करोड़ 32 टावरा ने पोलियो खुराक पिलावण रो लगस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काल दे सवाना 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माथे प्रसारित वेला। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके आज जयपुर में विया राज्य थरा कार्यक्रम में कई महत्व ऐलान करिया। श्री शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 उद्यमिया ने भिड़ी सेवा में देवण सारू रैंप पोर्टल और ODOP कॉफी टेबल बुक रोई अनावरण करियो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस साल 25 नवा स्टार्टअप्स ने रोकड़ मदद दिया जाऊन रो ऐलान करियो। श्री शर्मा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पात्र उद्यमिया ने रिको जमीरा आवंटन पाना सौंपया। साथ ही न्यारी न्यारी योजनाओं और फायदो लेवन वाला ने 13 करोड़ 32 रकम रा कर्ज और सब्सिडी रा चेकी दिया। ई मौके बोलता श्री शर्मा कहो के सरकार उद्यमिता ने बढ़ावो और विनिवेश ने बढ़ावो देवण सारू बरोबर काम कर रही है। वणा कहो के विकसित भारत रा विजन ने साकार करण में MSME री महत्व भूमिका है। 33,32,000 MSME रे साथ है राजस्थान देश रो चौथो सबू मोटो राज्य बन गयो है।
2: तो मुझे गर्व है कि 33,00,000 से अधिक MSME उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया

0: ढाई वर्ष में वो आपके सामने उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके से हो।
1: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई मौजूद रिया। एमएसएमई दिवस रे मौके राखी जी जलसा में प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार बनावने लेर कराया जा रहा कामा रो सकारात्मक संदेश दी रिजियो। राजस्थान रिफाइनरियों प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार ने घणो बधाओ मिलेला। एचपीसीएल कानियों पहला चरण में राज्य भर में 332 नवा पेट्रोल पंप खोलिया जाएला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत में आज जयपुर में भी एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड रा एहलकारा री मीटिंग में आ जानकारी दी रिजी। इस सारू प्रदेश में 304 ठोड़ा री पिछाण करी जा चुकी है, जठे रिटेल आउटलेट्स सारू एचपीसीएल 400 करोड़ रुपया रो निवेश करेला। 31 जुलाई तई ई बारा में नवी नीति तैयार कर ली जाएला। बैठक में ओई फैसलो ली रिजियो के परियोजना रे तहत सरकारी जमीन ने एचपीसीएल ने लीज माथे मुहैया कराई जाएला, जिणो नुआ पेट्रोल पंप स्थापित कराया जा सके। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि जोधपुर लिफ्ट केनाल रा तीजा चरण रो काम आखिरी दौर में है, वना आस जताई के आवता 3-4 महीना में इन रो पानी जोधपुर पूग जाएला। आज जोधपुर में मीडिया साथे बतल में श्री शेखावत कहो के ई परियोजना में लंबा बगत हूँ चाल रही तकनीक और दूजी खामियां ने दूर करीजिया है, जिणु इन रो काम तेजियों आगे बढ़ रियो है। श्री शेखावत बतायो के उनाड़ा में पीवण रा पानी री परेशानियों उबरण सारू 4-32 जलाशय री मंजूरी दी रिजी है, वना बतायो के फलसूट जलाशय में पानी भरी जो वे चुक्यो है और बाकी रा जलाशय में बेगा पानी पुगेला। देश ने
2: सारे अवरोधों को दूर करने के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। तो जिस तरह से क्लोजर्स आते हैं और पानी का संकट, डिमांड गर्मी में ज्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गाँव की, ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा।
1: देश ने पोलियो मुक्त बनाया राखण रा मकसदों काल्यों राष्ट्रीय अभियान चलायो जाएला। इन रे तहत 5 साल तई रा सगड़ा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जाएला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुजब राज्य रा सगड़ा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रा, आंगनबाड़ी केंद्रा और खासतौरू बनाई जा पोलियो बूथा माथे आ दवा पिलाई जाएला। ये दिन खुराकों बचोड़ा टाबरा ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार दवा पिलावेला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम बतायो के ई अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दूजा आवन जावन री ठोड़ा टाबरा ने पोलियो दवा पिलावेला। राज्य रा टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो के अभियान रे तहत प्रदेश रा 1 करोड़ बत्ता टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलावण रो लगस राखी जो है। ई सारू 60,000 पोलियो बूथ बनाई जा है।
3: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूं सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स आवश्यक रूप से पिलाएं।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान ने कामयाब और असरदार बनावन सारू आज कई ठोड़ा आशा सहयोगिनिया और नर्सिंग पड़ेसरा जागरूकता रैली निकाली। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करेला। ओ रेडियो मासिक कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला, AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करियो जाएला। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना

0: पर प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इन रोशी दो प्रसारण वेला हिंदी प्रसारण रे तुरंत पछे क्षेत्रीय भाषा माए मन की बात कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा माथे आज ससेल्स पुग्या। हवाई अड्डा माथे ससेल्स राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वारो स्वागत करियो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहो कि ससेल्स हिंद महासागर में भारत रो महताऊ समुद्री साझेदार और कनेरो दोस्त है। श्री मोदी दोनों देशों रा लोगों रा फायदा सारू भारत और ससेल्स रा लंबी बगत रा संबंध और सहयोग ने बढ़ावा देवन सारू आस जताई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी ने आवता 2 साल में देश रा 500 शहर और कस्बा ताई बधाई जायला। भारत टैक्सी रा उद्घाटन सत्र में श्री शाह ई पहल ने सहकारी हलका में एक क्रांतिकारी कदम बताया। वणा कहो कि भारत टैक्सी रो मकसद चालका ने सीधो फायदो पुगार निष्पक्ष और साफ गोई बंदोबस्त पारदर्शी व्यवस्था बनावणो है। वणा कहो कि इन ने चालका ने मेहनता नो बत्तो मिलेला और लोगों ने हिफाजती और किफायती यात्रा रो फायदो ही मिल सकेला।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रो 16 वर्षो काले नवी दिल्ली में वेला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इन सदारत करेला। जलसा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों रा स्वास्थ्य मंत्री सांसद और ठवा एहलकार हिस्सो ले वेला। ई माए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सतत विकास लगस खाद्य और औषधि सुधार और इणु जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं रा मुद्दा माथे बतड़ी वेला। भारतीय सेना री दक्षिण पश्चिम कमान रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह आज राज्यपाल हरिभाव बागड़े ऊ मिलिया। जयपुर माए लोक भवन माए भी ई भीट माए वणा राज्यपाल ऊ न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 काले वेला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कान्यू आ परीक्षा ली जायला। इन रे तहत कुल 269 ओदा सारू कामयाब उम्मीदवार ने चुनिया जायला। इम्तिहान ने कामयाब और सुचारू और साफ गोई संचालन सारू सगली तैयारियां कर दीजी है। परीक्षा केंद्र माथे करीजा बंदोबस्ता ने करडायू लागू करने रा निर्देश दीजिया है। नैबे मौसम राज्य में लाड़ला कुछ दिनों प्री मानसून री गतिविधियां री सक्रियता बरोबर बनी उड़ी है। वठई आथोनी राजस्थान रा कुछ जिला अजय करड़ी गर्मी और उमस रा फीट माए है। श्री गंगानगर चूरू बीकानेर बाड़मेर और जैसलमेर माए दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह रियो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन माए राज्य रा उत्तर पूर्व और दक्षिणाध हल्का माए आंधी बिरखारी गतिविधियां बनी रहने रा आसार जताया है। कई जिला माए गरज चमक रे साथ झमाझम बिरखा वह सके है। आज 27 जिला माए अंधड़ और बिरखा रो येलो अलर्ट बताई जो है। वठे जुलाई पहला हफ्ता माए बिरखारी गतिविधियां माए बढ़वार री आस है। ई बीचे आज बांसवाड़ा जिला माए कई थोड़ा तेज बिरखा भी। वाठी ने सिरोही जिला रा पिंडवाड़ा और आरएसआर रा हल्का माए रिमझिम बिरखा होवणो मौसम सुहावणो बण्योड़ो है। आबू आज माए चोखी तादाद माए सैलानी पुग्या है। उठी ने बालोतरा और सवाई माधोपुर माए करड़ी गर्मी और उमस लोग परेशान रिया। भामाशाह सम्मान समारोह 2026 रा राज्य थरो जलसो 29 जून ने जयपुर माए वेला। स्कूल शिक्षा महकमा कानियों बिरला सभागार में होने वाला एक कार्यक्रम में भामाशाह और प्रेरकों को सम्मान करो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज महकमा रा निदेशक सीताराम जाट बतायो कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावरी जलसा में भेड़ा वेला। मैं अब आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमी ने भेड़ी सेवा में देवण सारू रैंप पोर्टल रो अनावरण करियो। HPCL कानियो 400 करोड़ रुपया रो निवेश करने राज्य में 300 नवा पेट्रोल पंप खोलिया जायला। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1 करोड़ 32 टावर ने पोलियो खुराक पिलाउन रो लगस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माते प्रसारित वेला। नाइन्टी साथै प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पुरो भयो मारो अग्लो समाचार बुलेटिन काले

0: सवारा 9 बजा हिंदी में प्रसारित करियो जायला नमस्कार
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर और डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर संध्या के 7 बजे हैं ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळा श्रोतावाने मुकेश भाई का घना घना राम राम, मोकला मोकला राम राम। किसान भाइयों, ई टाइम आप खेतीबाड़ी करन ला रहे हैं और काफ़ी समय से आप खेती करन ला रहे हैं और दिन ब दिन आप खेती में ज़्यादा उपज ज़्यादा मुनाफा कमाने की जुगत में रहे हैं और ये होड़ा होड़ में फसलों पर भांत भांत का कीटनाशक खाद उर्वरक जमीन में गिरण को काम करन ला रहे हैं। ईशू एक बार तो अपनी फसल ठीक हो जाए लेकिन ज़्यादा रासायनिक खाद उर्वरक दवाइयाँ स्प्रे अंग छिड़काव करने से अपना अनाज और भूमि खराब होनी जरूर शुरू होगी। जको अनाज आप आज के टाइम घर में बरता वो भी एकदम सफाई जहरीलो और दूषित अनाज है जिसो भांत भांत की बीमारियाँ शरीर में लाग रही है और तो और भूमि की भौतिक दशा भी खराब हो रही है। ईशु धरती का माँ या धरती पर रहने वाला जीव जंतु भी नष्ट होने लग रहे हैं। बहुत सी नस्लां पशु पक्षियों की नष्ट होगी और बहुत सी नष्ट होने की कगार पर आ रही है। अपनो पर्यावरण दूषित होना शुरू हो गयो। ये जगह नुकसान आप देखने लाग रहे हैं और जगह परिणाम अपने सामने आ रहे हैं और आप भुगतान लाग रहे हैं ये सब खेती में फसलों पर रासायनिक छिड़काव या बुरकाव की वजह से हुए हैं। आज के टाइम में जितो ज़्यादा रसायन खेत में छिड़कांगा बिता ही इनका परिणाम आपने आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक देखने मिलेगा। इन वास्ते आप भी इसमें चेतना जरूरी है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य और जीवन बचा सका। तो इन बारे में किसान भाइयों आप और भी बात करांगा, पहला आप सुन लिया ओ भजन सुनो सा।

भाई लोगों सुनियो भजन, बात करा आपा खेती बाड़ी की तो आज आपा बात कर सा हरी खाद के बारे में, क्योंकि जकी जमीन ना क्षारीय लवणीय या उसर होगी बा जमीना ने हरी खाद को प्रयोग करके आपा सुधार सका। क्योंकि ज़्यादा उर्वरक छिड़काव छूँ या रासायनिक छिड़काव छूँ जमीना कठोर होगी जिशु खेती भी नाम मात्र की होवे। भाई लोगों हरी खाद अपनी माटी की रासायनिक और भौतिक दशा ने सुधार सके। भाई लोगों सहसु पहली बात करा कि हरी खाद की जरूरत क्यों है जमीन ने, तो किसान भाइयों ज्वार गेहूं की फसल को फसल चक्र अपनाने छूँ और भूमि में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जमीन में न डालने के कारण माटी में जीवाश्म पदार्थों की मात्रा में कमी होने लग जाए। इनके अलावा माटी की जल धारण करने की कमी के सागे सागे माटी कटाव भी ज़्यादा होने शुरू हो जावे। माटी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में भी कमी और बांगे क्रियाशीलता में भी कमी देखने मिलने लग रही है। किसान भाइयों माटी की लवणीयता क्षारीयता में भी बढ़ोतरी होने लग रही है। कई बार आप देखा कि फसल में नया नया रोग लगना शुरू हो जाए। इनको मोटो सो कारण माटी जनित रोग और खरपतवार है। इन वास्ते किसान भाइयों जे आप समस्याओं से छुटकारो लेना है

खेतगी माटी और भौतिक दशा में सुधार खातर हरी खाद या कंपोस्ट खाद ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेवा। इंशु माटी में ताकत बढ़सी और फसल भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, इनके अलावा भी बहुत सा फायदा है हरी खाद का। जे हरी खाद को सही तरीके से प्रयोग करा तो हरी खाद माटी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ने बढ़ागे, माटी संरचना में सुधार करे और माटी में जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ावे। माटी की अम्लीयता और क्षारीयता में भी सुधार ला सका, क्योंकि हरी खाद भूमि में सड़ने से कई प्रकार का अम्ल पैदा हो गए, माटी ने उदासी बनावे। किसान भाइयों, माटी में मौजूद कई प्रकार का सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए और जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी ज़्यादा हो जाए। इनके अलावा हरी खाद से माटी में पोषक तत्वों की और नत्रजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम आ तत्वों की मात्रा और पौधा जका पोषक तत्व ग्रहण करे बा क्षमता भी बढ़ जाए। इंशु माटी भुरभुरी होवे जगह की वजह से माटी में वायु संचार भी सुचारू रूप से हमतो रहे। भाई लोगों, ज़्यादातर आप देखा कि खेता में खरपतवार की समस्या रहे, तो इंशु ज़्यादा खरपतवार भी पैदा कौन हो। आप सगड़ा जाना कि खरपतवार पूरी फसल ने खराब कर दिए। जे आप हरी खाद ज़्यादा प्रयोग करांगा, यानी हर साल हरी खाद काम में लेशा, तो खरपतवार कम पैदा होगी और अपनी खेचड़ भी टलेगी। ढेंचो और सनई दो इसी फसलें हैं जबकि माटी में मौजूद क्षारियता और लवणीयता ने कम करने को काम करे। और अपना जानी जान किसान भाई बतावे कि राइजोबियम बैक्टीरिया भी इनमें जकी है वो आपकी पूरी भूमिका निभावे। अब बात कर सें हरी खाद की बिजांत करता टाइम के सावधानी अपन रखनी है। तो किसान भाइयों, जब भी आप हरी खाद की बिजाई करा तो बढ़िया उन्नत किस्म का बीज लेना जरूरी है और बेई किस्म लेनी है जबकि बढ़िया शाखावां और ज़्यादा पत्तियाँ ली होवे। पौधों का तना कोमल और रसदार होवे। पौधों की जड़ा जल्दी बढ़वार लेने वाली और गहरी जड़ा वाली होनी चाहिए। और हरी खाद के वास्ते जकी फसल आप बिजाई करिए भी फसल में कम से कम पानी की जरूरत होवे, ज़्यादा पानी नहीं देना है और फसल कीट और रोग अवरोधी होनी चाहिए। आ सगली बातों को आपने ध्यान रखना है। तो बातें और भी करांगा, पहला आप सुन लिया वो गीत लियो सुनो सा।

भाई लोगों, अब बात करा हरी खाद के लिए आप किसी किसी फसल की पहचान कर सका तो सबसे पहली फसल सनई की आप बात करा तो किसान भाइयों, सनई हरी खाद के वास्ते बहुत बढ़िया फसल मानी जाए। जठे बढ़िया बलुई और दोमट माटी है, बी क्षेत्र में आप सनई की पहचान कर सका, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी जरूरी है, क्योंकि सनई एक दलहनी फसल है और इनमें पानी की ज़रूरत कम पड़े। इनकी बुवाई टाइम की बात करें तो मई से जुलाई तक या फिर बरसात के दिनों में भी आप कर सका। जे किसान भाइयों कने पानी सिंचाई की व्यवस्था कम है तो भी सनई की बीजांत बढ़िया तरीके से आप कर सका। भाई लोगों, एक हेक्टेयर खेत वास्ते 80 से 90 किलो बीज आप काम में ले सका। जे आप मिश्रित फसल की बिजाई करने लग रहे हैं तो मिश्रित बीज में सनई को बीज 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखना है। भाई लोगों, सनई की एक खासियत आ भी है कि आ एक जल्दी बढ़वार लेने वाली और मूसला जड़ वाली फसल है, जिसमें खरपतवार भी जमीन में कम पैदा हुए। बुवाई के 40 से 50 दिनों बाद सनई की फसल ने तोई शूँ या हल शूँ खेत में जुताई करके अच्छी तरह माटी में मिला देवा। इन शूँ 20 से 30 टन हरी खाद और 85 से 125 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर माटी में पैदा हो जाए। यहाँ ही ढेंचो भी हरी खाद के लिए बहुत बढ़िया फसल है और आ भी एक दलहनी फसल में आवे। किसान भाइयों, ढेंचो हर प्रकार की जलवायु और माटी का माँ आप इनकी बिजाई कर सका। किसान भाइयों, इनकी बिजाई आप मई के पहले सप्ताह में कर देवा तो ज़्यादा ठीक रहे। इनके अलावा आप अभी भी कर सका। हरी खाद वास्ते बीज की मात्रा आप 40 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लेना है, लेकिन बिजाई से पहले आप बीज रात भर पानी में डुबो के रखा तो बीज उगाव बढ़िया और जल्दी होवे। किसान भाइयों, बीज जब आप भिगोवा बिंग बाद बीज ने पानी छू बारे निकाल गए और बाद में बीज के ऊपर 4 किलोग्राम जिप्सम छिड़क गए बिना हाथ छू अच्छी तरह मिला लेवा, ताकि जिप्सम बीज पर बढ़िया तरीके से चिपक जावे। जे बीज आप उपचारित करके बीजांत करा तो उगान और फुटान भी बढ़िया होवे। इनके अलावा आप ग्वार की फसल भी हरी खाद के तौर पर बिजाई कर सका। आ भी एक दलहनी और मूसला जड़ वाली फसल है। ग्वार की बिजाई वास्ते 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़े, जिसू 20 से 25 टन हरी खाद आप ले सका। किसान भाइयों, हरी खाद सिंचित अवस्था में मानसून आने के 30 से 35 दिन पहली या असिंचित क्षेत्र में जठे बिरानी भूमि है बठे मानसून आने के तुरंत बाद आप बीजांत कर सका। इन वास्ते आप हरी खाद भूमि में जरूर देनी चाहिए। इंशू एक तो आप अनाप शनाप रासायनिक खाद उर्वरकों पर जो खर्चो लगावा वो कौन लगानो पड़े, और दूसरी बात प्राकृतिक खेती या जैविक खेती से फायदों भी बहुत है। हरी खाद से कई साल तक माटी की उर्वरा शक्ति कायम रहे, कीड़ा कांटा भी कम लगे, खाद्यान्न भी जहर रहित पैदा होवे, जो स्वास्थ्य के वास्ते ज़्यादा फायदेमंद है। भाई लोगों, हरी खाद के सागे सागे आप कंपोस्ट खाद गोबर की खाद भी जमीन में दे सका और अपनी भूमि को सुधार करके अच्छी पैदावार ले सका। तो इन तरह से आप जबकि भूमि बंजर होने लग रही है या लवणीय या क्षारीय होने लग रही है, बीच में आप खुद बच सका और खेत बचा सका। तो बातें और भी करांगा, पहला आप सुन लिया वो गीत सुनो।

लो भाई लोगों गीत बात करा आप खेती बाड़ी की, तो किसान भाइयों अपने ही क्षेत्र में किसान भाई दलहन की खेती भी करे, क्योंकि अट्ठे की माटी और मौसम दलहन की खेती वास्ते बढ़िया मानी जाए। और ई मौका अपने अठे किसान भाई मूंग मोठ की बिजाई भी कर सके। ई खेती में ज़्यादा खेचड़ भी कौन करनी पड़े और कम पानी से बढ़िया खेती करके अच्छो मुनाफो भी ले सके। तो आप बात करा मूंग मोठ की अच्छी अच्छी किस्म और बाकी विशेषताओं के बारे में। किसान भाइयों सैसू पहली बात करा मूंग की किस्मों के बारे में। मूंग की बढ़िया किस्मों में IPM 02 और 03 एक बढ़िया किस्म है। इनको दानों मध्यम आकार को होवे और 100 दाना को वजन लगभग 3.4 ग्राम तक होवे। किसान भाइयों आ किस्म पीत शीरा रोग यानी येलो मोजेक वायरस के प्रति सहनशील होवे। सावणी में भी जान ताली आ किस्म लगभग 70 से 72 दिनों में पक के तैयार हो जाए और औसत उपज 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होवे। यहाँ ही एक किस्म है सत्या। इनको दाणो भी मध्यम आकार को होवे और 100 दाणों को वजन लगभग 3.1 ग्राम तक होवे। आ किस्म दूसरी किस्मों की जगह पीत शीरा रोग के प्रति प्रतिरोधक होवे। इनके पकाव की बात करें तो 67 से 72 दिनों में पाक के तैयार हो जाए और औसत उपज 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आपने मिल सके। किसान भाइयों K851 भी एक बढ़िया किस्म है। आ किस्म जायद और खरीफ दोनों मौसम में इंगी बिजांत आप कर सका। किसान भाइयों आ किस्म 60 से 80 दिनों में पाक के तैयार हो जाए। इन किस्म को दाणो मोटो और चमकदार हुए जगह की वजह से बाजार में आपने अच्छो भाव भी मिले। इनके अलावा किसान भाइयों K851 किस्म शुष्क और असिंचित क्षेत्र खतरे एक बढ़िया किस्म है। जे आपने कने कम पानी की सुविधा है तो आप इन किस्म की बिजाई आप कर सका। अब बात करा मूंग की MUM 2 किस्म के बारे में। आ किस्म भी एक बढ़िया किस्म है। इनके पौधे की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर तक हुए। दाना चमकदार और हरिया और मध्यम आकार का हुए। इन किस्म में 1000 दाना को वजन 36 ग्राम तक हुए। आ किस्म पीला मोजेक रोग के प्रति प्रतिरोधक हुए। इनकी औसत उपज की बात करा तो 3.5 से 4 क्विंटल प्रति बीघा तक आपने मिल सके। बात गंगोत्री यानी गंगा 8 की करा तो आ किस्म खरीफ और जायद मौसम के वास्ते बढ़िया किस्म है। भाई लोगों आ किस्म लगभग 72 दिनों में पाक के तैयार हो जाए। इनके पौधों की ऊंचाई लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर तक होवे और भाइयों इनको 100 दाना को वजन लगभग 3 ग्राम तक होवे। आ किस्म पीला मोजेक रोग के प्रति मध्यम रूप से प्रतिरोधक होवे और औसत उपज 3 से 3.5 क्विंटल तक आपने मिल सके। SML 668 किस्म भी एक बढ़िया उपज देने वाली किस्म है। आ किस्म जायद और खरीफ दोनों टाइम में आप बीज सका। आ किस्म किसान भाइयों 60 से 65 दिनों में पाक के तैयार हो जाए और इनके 100 दाना को वजन 5 से 6 ग्राम तक हुए। तो ये ही मूंग की बढ़िया किस्म। और अब बात करें आप खेत तैयारी की, तो किसान भाइयों मूंग की खेती वास्ते दोमट और हल्की माटी की भूमि जठे पानी निकास की बढ़िया सुविधा होवे इसी भूमि में आप मूंग की बिजाई कर सका। लेकिन क्षारीय भूमि नहीं होनी चाहिए। खेत ने एक या दो बार बढ़िया जोत के तैयार कर लेना है। इनका सागे किसान भाइयों दीमक प्रभावित असिंचित क्षेत्र में 6 किलो क्विनालफास 1.5% चूर्ण बुआई करने से पहले खेत में मिला के भूमि उपचारित कर लेनी है। जठे बुआई के टाइम की बात है तो जुलाई के पहले पखवाड़े से मैं आप मूंग की बिजाई कर सका, क्योंकि ई टाइम बिजांत करेड़ी फसल में पीत शीरा रोग कम लगे। किसान भाइयों बिजाई खातर 4 से 5 किलो स्वस्थ बीज प्रति बीघा के हिसाब से बिजांत करनी है। किसान भाइयों बुआई आप कतारा में ही करनी है। कतार से कतार की जकी दूरी है 32 सेंटीमीटर और पौधा से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर राखनी है। लेकिन बिजाई से पहले बीज उपचार करना जरूरी है। इनके वास्ते आपने थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलो बीज इधर से आप बीज उपचारित करना है। भाई लोगों एजेक्टोबैक्टर और PSB कल्चर पाउडर का 3 पैकेट 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज ने बुआई से पहले यानी 1 घंटा पहले उपचारित कर बिजाई करके करनी है। आपने ईशु नत्रजन और फास्फोरकांगी काफ़ी हद तक आप बचत कर सका। इनके अलावा किसान भाइयों दूसरी दलहनी फसलों की तरह मूंग में भी आप जे राइजोबियम जीवाणु कल्चर से उपचारित करके बुआई करा तो पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हो सके। तो अब आप सुन लिया वो भजन सुनो सा।

भाई लोगों सुनियो भजन, बात करा आपा मूंग मोठ की उन्नत खेती की। तो खाद उर्वरका में मूंग के लिए प्रति बीघा 10 किलो फास्फोरस और 5 किलो नत्रजन बुवाई से पहले बीज देना चाहिए। इनका सागे सागे 37.5 किलो प्रति बीघा जिप्सम भी खेत में नाखनी चाहिए ताकि अच्छी उपज आपा ने मिल सके। मूंग का सागे सागे किसान भाई मोठ की भी जांच कर सके। थाने मोठ की अच्छी अच्छी किस्म बता देवा कि मोठ की बिया तो बहुत सी किस्म है, लेकिन RMO 40 एक बढ़िया किस्म है। ई किस्म की पत्तियां चौड़ी कम कटाव वाली गहरे रंगी होवे। पौधे की ऊंचाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक होवे। आ किस्म 60 से 65 दिना में पाक के तैयार हो जाए। किसान भाइयों शुष्क या सूखे की स्थिति में भी आप ई किस्म की बीजांत कर सका। इनकी फलियां और दाना हल्के भूरे रंगा होवे और 1000 दाना को वजन 20 से 30 ग्राम तक होवे। उपज की बात करा तो 6 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आपने इशू उपज मिल सके। किसान भाइयों बिजाई से पहली खेत ना अच्छी तरिया तैयार करना भी बहुत जरूरी है। मोठ की खेती खातर ज़्यादातर शुष्क और बलुई शू लेगे दोमट माटी में भी आप खेती कर सका। जठे बारिश सामान्य होवे बठे इनकी खेती बढ़िया होवे। ज़्यादा पानी वाली भूमि में मोठ की बीजांत नहीं करनी चाहिए। इनका वास्ते भूमि ने एक दो बार बढ़िया जोत के खेत ने तैयार कर लेना चाहिए। जे अगर संभव समय अभाव में खेत जुताई ना होवे तो बिना जोते भी आपा मोठ की बीजांत कर सका। बिजाई खातर बीज की मात्रा 2.5 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से बीजांत कर सका। पण बीज एकदम स्वस्थ और उन्नत होनो जरूरी है। मोठ की बुवाई करता टाइम कतारा से कतारा की जकी दूरी है वह 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों मोठ की बुवाई से पहले बीजोपचार करना जरूरी है। बीज उपचार खातर थायरम या कैप्टन 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचारित कर लेना है। दूसरी जकी दलहनी फसलों की आप तैयारी तरिया मोठ ने भी राइजोबियम जीवाणु खाद से उपचारित करने से पैदावार में बढ़ोतरी ले सका। किसान भाइयों मोठ की फसल में खाद उर्वरक भी टाइम टाइम पर देना जरूरी है। बिया तो मोठ की फसल में कोई खास उर्वरक की जरूरत कौन पड़े नहीं, फिर भी जे खेत ज़्यादा रेतीलो या कमजोर भूमि वालो है तो 8 किलो फास्फोरस और 2.5 किलो नत्रजन प्रति बीघा के हिसाब से बुवाई का टाइम बुरकाव कर देना चाहिए। इनका सागे सागे निराई गुड़ाई भी टाइम सारू करता रहना चाहिए क्योंकि खरपतवार बीजांत के सागे ही फसल से पहली पैदा हो जाए। इन वास्ते टाइम टाइम पर खेत से खरपतवार भी निकालता रहना है। पौध संरक्षण की बात करें तो इन फसल में कातरां को नियंत्रण करना जरूरी है। कातरा को नियंत्रण के लिए मानसून की वर्षा शुरू होते ही जिग्या जिग्या प्रकाश पाश को इस्तेमाल करना चाहिए जिसे कातरा ने नियंत्रित आप कर सका। इनके अलावा खेत के चारों मेर कचरो जड़ा के चाननों करके फिर भी आप कातरांग या दूसरा हानिकारक किटांग आप निपटारो है जो कर सका माने अपन नष्ट कर सका। तो आ सगली बातों को ध्यान रखे आप मूंग मोठ की उन्नत खेती कर सका। पण अब चालता चालता आप सुन लिया वो गीत जो सुनो सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत।

गीत गाता चल। इस फिल्म का ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी जसपाल सिंह और साथियों की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। आइए सुने आशा भोसले की आवाज़ में नील कमल फिल्म का ये भक्ति गीत। गीत रचना शाहिर की, संगीतकार रवि।

दिलराज कौर, सुरेश पाटकर और साथियों की आवाज़ में आइए सुने अम्बे माँ जगदम्बे माँ फिल्म का ये भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज फिल्म बलमा के कुछ गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का श्रोताओ, इस कार्यक्रम में आज जिस फिल्म के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसका नाम है बलमा। फिल्म बलमा सन 1993 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे लॉरेंस डिसूजा, निर्माता थे सुरेश ग्रोवर। नदीम सरवण ने इस फिल्म में संगीत दिया था। इस फिल्म के गीत आज हम खास दिवस के कारण आपको सुनवा रहे हैं। बहरहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको बलमा फिल्म के गीत सुनवा रहे हैं। आज 27 जून 27 जून 1950 को भारतीय फिल्मों में पार्श्व गायक के लिए जाने जाने वाले नितिन मुकेश, जिनका आज ही के दिन यानी 27 जून 1950 को जन्म हुआ था। श्रोताओं, नितिन मुकेश ने 1980 से 90 के दशकों में कई संगीतकार के साथ काम किया। खयाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, राजेश रोशन,

शर्मन, आनंद मिलन। नितिन मुकेश के गाए गीत को अभी आपने सुना। बहरहाल फिल्म बलबा में उन्होंने इस गीत में अपना योगदान दिया था। आशा भोसले के साथ गीत गाया था। बात करें फिल्म बलमा की, तो इस फिल्म में भूमिका निभाने वाले मुख्य कलाकार थे अविनाश वधावन, आयशा जुल्फा, सईद जाफरी, अंजना मुमताज और शम्मी। फिल्म की कहानी के बारे में हम जिक्र करेंगे। बहरहाल सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बलमा फिल्म के कुछ गीत। हवा में तेरी खुशबू घुली जैसे कोई राग सुनाता हो, हर लम्हा तेरा नाम लिखे जैसे कोई गीत सजाता हो। सपनों की झील में तेरा चेहरा चांदनी बनकर उतर आया, तेरे बिना ये दिल वीराना तेरे संग ही घर बन पाया। श्रोताओं, बात करें नितिन मुकेश की, तो बलमा फिल्म के साथ साथ राम लखन, आईना, किंग अंकल, काला बाजार, किशन कन्हैया, जैसी करनी वैसी भरनी, तेजाब, दरिया दिल, मेरी जंग, क्रांति, बेवफा सनम और चांदनी सहित कई फिल्मों में उन्होंने अपना योगदान दिया।

अर्लाव फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बनी बैनर तले इस फिल्म में कहानी लिखी थी तलत रेखी ने। इस फिल्म की अवधि 174 मिनट की थी। 1 जनवरी 1993 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। कहानी के साथ साथ इस फिल्म में मुख्य बात आज के दिन ये मानी जाती है कि एक गीत इस फिल्म का जब भी हम सुनते हैं तो वाकई हम साथ में गुनगुनाने लगते हैं।

श्रोताओं, फिल्म बलमा में गीत लिखे समीर ने, संगीतकार थे नदीम शर्मन। इस फिल्म में नितिन मुकेश के साथ साथ गीतों को आवाज़ दी थी आशा भोसले, कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

श्रोताओ, एक बार फिर से नितिन मुकेश को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बलमा फिल्म के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आज की मुख्य समाचार। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंचे। FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप के साथ, जहां पर आज ग्रुप एल में पनामा और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। वहीं दूसरे मुकाबले में इसी ग्रुप के क्रोएशिया और घाना का मैच खेला जाना है। दोनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से खेले जाएंगे।

0: वहीं से पहले मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं विश्व कप में कल खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
1: फीफा विश्व कप के ग्रुप मुकाबले अब अपने अंतिम दौर में हैं और नॉकआउट की रफ्तार पकड़ती दौड़ ने विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर पहुंचा दिया है, जहां हर मुकाबला किसी न किसी टीम के भाग्य का फैसला कर रहा है। इसी कड़ी में ग्रुप जी में मिस्र और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा।
2: The final whistle blows. Two teams that gave it everything here. What a game. What drama in Seattle.
1: और इस ड्रॉ ने मिस्र को विश्व कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में दिला दी है। ग्रुप जी में मिस्र दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा, जबकि ईरान तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि ईरान की नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। महमूद साबेर ने मुकाबले के 5वें मिनट में ही पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि ईरान ने जल्द ही पलटवार किया और मैच के 14वें मिनट में रमीन रेजाइन ने गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन ये रोमांचक मुकाबला इसी स्कोर पर समाप्त हो गया। इस ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 5-1 से हरा दिया। बीसी प्लेस स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। वहीं न्यूजीलैंड का अगले राउंड में पहुंचने का सपना टूट गया है। उधर ग्रुप एच में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं उरुग्वे का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमों के गोलकीपरों ने दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि मैच के 42वें मिनट में स्पेन की टीम आखिरकार 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही। बिना ने बॉक्स के किनारे से जगह बनाते हुए तेज शॉट लगाया, जो उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा को चकमा देकर गोल पोस्ट में पहुंचा। इसके बाद स्पेन ने ये मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया।
2: Alex Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. Gets it right back. Ferran Torres off the crossbar. It is full time. Spain win the group. Uruguay crash out the group stage for a second straight World Cup.
1: एक अन्य रोमांचक मुकाबले में केप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के साथ ही फीफा विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर इतिहास रच दिया है।
2: Cabo Verde came to experience the World Cup. The men from the Tiny Island in the Atlantic are through to the knockout phase of the FIFA World Cup on their World Cup debut.
1: ग्रुप एच में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केप वर्डे का राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन अर्जेंटीना से सामना होगा। ये उनके देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मैच होगा। केप वर्डे अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में बिना कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: और अब फुटबॉल के बाद बात करते हैं हॉकी की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 के बड़े अंतर से रौंद दिया। लंदन में खेले गए मुकाबले में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और एक के बाद एक विपक्षी टीम के गोल्फ कोस्ट पर 7 गोल दागे।
3: लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर्स में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एक तरफा दबदबा देखने को मिला। पहले पाकिस्तान से 1-0 से पिछड़ने के बाद हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्षी टीम चारों खाने चित्त हो गई। भारत ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में लगातार अंतराल पर गोल करते हुए मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया। भारत ने मैच के दौरान 36 बार पाकिस्तान के सर्कल में प्रवेश किया और 13 पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए, इनमें से 3 पर गोल करने में सफलता मिली। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 18 बार भारतीय सर्कल में प्रवेश किया, लेकिन वह कोई फील्ड गोल नहीं कर सका। भारतीय मिडफील्ड में हार्दिक सिंह और मनप्रीत सिंह ने शानदार खेल दिखाया। वहीं अभिषेक, दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने लगातार पाकिस्तान के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। मैच की शुरुआत में पाकिस्तान ने बढ़त बनाई और 13वें मिनट में अबू महमूद ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर में शानदार वापसी की और 19वें मिनट में सुखजीत सिंह ने बराबरी का गोल किया। इसके बाद 26वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। 34वें मिनट में मिले पेनाल्टी स्ट्रोक पर हार्दिक सिंह ने एक बेहतरीन गोल किया। इसके ठीक एक मिनट बाद तेज काउंटर अटैक पर जुगराज सिंह ने चौथा गोल दागकर भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया। 41वें मिनट में सुखजीत सिंह के शानदार पास पर अभिषेक ने गोल कर स्कोर 5-1 कर दिया। 45वें मिनट में हरमनप्रीत

0: इनके ड्रैग फ्लिक पर मिले रिबाउंड को राजकुमार पाल ने गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 6-1 कर दिया। मैच के 54वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने शानदार मूव को गोल में तब्दील करते हुए मैच में भारत के लिए 7वां गोल दागा। ये हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार 17वीं जीत है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में स्पेन से आगे 7वें स्थान पर आ गया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक बेहद शानदार जीत और एक ऐसी ही जीत का इंतजार भारत को इस समय अहमदाबाद में है, जहां इस समय एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जब तक ये मैच के लिए समाचार लिखे जा रहे थे, भारत ने पहला सेट अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद इंडोनेशिया ने लगातार 2 सेट जीते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के ऊपर एक खास जानकारी लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, सेमीफाइनल मुकाबला एक कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है, लेकिन ग्रुप स्टेज भारतीय टीम ने करिश्माई प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे?
2: जी शक्ति, भारत का सेमीफाइनल तक का ये सफर टीम की करिश्माई खेल की कहानी को बयां करता है। भारत ने ग्रुप स्टेज के सभी 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। और शक्ति, इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि भारतीय टीम ने इन 5 मुकाबलों के दौरान मात्र 1 सेट ही गंवाया है। भारत ने पहले न्यूजीलैंड को, फिर कजाकिस्तान को 3-0 से हराया, इसके बाद चीनी ताइपे को 3-1 से मात दी। सबसे अनोखा पल टूर्नामेंट का शक्ति ये आया कि भारत ने गत विजेता बहरीन को 3-0 से मात दी। इसके बाद अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 से आसान जीत दर्ज कर ली।
1: जी बिल्कुल, मात्र 1 सेट गवाया था भारत ने ग्रुप स्टेज में। क्या फैक्टर्स एनालिसिस किए जा रहे हैं भारत की इस परफॉर्मेंस पे, जो कि रेवोल्यूशनरी चेंज है ये?
2: जी, सबसे बड़ा फैक्टर की अगर हम बात करें, जो उनके कोच है, और मैं श्रोताओं को बताना भी चाहता हूं कि उनका आज जन्मदिन भी है, और कोच जो है वो ड्रैगन मिहेलोविक है, जिन्होंने बेहतरीन नेतृत्व किया है। लेकिन साथ ही खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें चिराग यादव, जोएल बेंजामिन जेब्राम, जेरोम चार्ल्स विनीत और सेटर अप्पुवापू मुथुस्वामी जैसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम के रैंकिंग को भी सुधारा। इस टूर्नामेंट में जब टीम आई थी तो 58वें पोजीशन पे थी, लेकिन अब टीम की जो रैंकिंग है वो 42वें पोजीशन पे है। और रैंकिंग का ये फायदा मिलता है शक्ति कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी जो भारत अच्छा कर सकती है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकती है।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रशांत। तो भारत को उम्मीद होगी कि ऐसा ही प्रदर्शन सेमीफाइनल में टीम करे और वापसी करते हुए फाइनल तक का सफर तय करे। और अब बात बैडमिंटन की, जहां देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
3: थाईलैंड मास्टर्स की विजेता देविका सिहाग ने बड़ा उलटफेर करते हुए जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी को हराकर यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। देविका ने महिला क्वार्टर फाइनल में दोनों गेम के अंतिम क्षणों में संयम बनाए रखते हुए गुंजी को 22-20, 21-19 से हराया। अब सेमीफाइनल में देविका का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। डेनमार्क की इस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा को 21-16, 11-21, 21-11 से हराया था। वही महिला सिंगल्स के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रक्षिता श्री को कनाडा की राहेल चांद से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष सिंगल्स में अनुभवी किदांबी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लियाओ झू फू को 21-9, 12-21, 21-8 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्रीकांत अब सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो का मुकाबला करेंगे। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जेलब्रमेन को 23-21, 21-11 से पराजित कर पहली बार BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में रौनक का सामना चीन के ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू ली यांग से होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब कार्यक्रम में बात महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जहां कल अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू कल अपना अंतिम ग्रुप स्टेज मैच खेलने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर उतरेगी, जहां उनके सामने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती होगी। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश पर एक आसान जीत दर्ज की है और टीम के हौसले एक बार फिर बुलंद होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने अपने सभी मैच बड़े अंतर से जीते हैं और एक मजबूत रन रेट के साथ ग्रुप में टॉप पर है। सोफी मिलिनियो की अगुवाई में 6 बार की T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने नाम के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है।

0: अगर वो ये मैच हारती भी है तो भी उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना भारत की तुलना में काफी आसान है। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है और इस हार से भारत की रन रेट पर भी असर पड़ा है। भारत अपने 4 में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ग्रुप में दूसरे स्थान पर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने 4 के 4 मैच जीतकर शीर्ष पर है। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर टीम के खिलाड़ी राधा यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: कोई भी ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं मुझे नहीं करना, मतलब लोग जा रहे रूथलेस प्रैक्टिस कर रहे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है क्योंकि सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट गेम है, कितना एक दूसरे को साथ में रखना है और एक दूसरे का प्रेशर थोड़ा नीचे को हटाना है, तो उस पे ज्यादा फोकस है।
0: भारत को अपने इन फॉर्म खिलाड़ियों से इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर होगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा से टीम को खास उम्मीद रहेगी। इनके अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया पर भी नजर रहने वाली है। गेंदबाजी में लगातार बेहतर कर रही श्री चरणी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, जिन्हें राधा यादव, नंदिनी शर्मा और रेणुका ठाकुर का साथ मिलेगा। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इस टीम की नजर दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में हुई गलतियों को सुधार कर अपने पहले T20 विश्व कप खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो भारतीय टीम लॉर्ड्स के इस मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर इस लक्ष्य पे भी होगी कि किस तरह से इस सफर को ऐसा बनाया जाए कि 5 जुलाई को वापस टीम फाइनल खेलने के लिए इसी मैदान पर उतर सके। और हरमनप्रीत कौर की आर्मी अपनी गलतियों से सीख लेते हुए कल ऑस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करना चाहेगी। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत को आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड के 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 18 ओवर और 5 गेंद में 148 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। ये पहला मौका था जब आयरलैंड ने भारत को किसी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हराया है। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में सर्वाधिक 50 रन बनाए। वहीं आयरलैंड की तरफ से मैथ्यूज हम्फ्रीज ने 3 और मैथ्यूज हॉलार्ड ने 3-3 विकेट लिए। हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगर आयरलैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो लॉकरेन टकर ने टीम के लिए 36 गेंदों पे 50 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसने टीम को एक अच्छी बुनियाद दी और मध्यक्रम को मजबूती दी, जबकि गैरेंथ डैनली के 49 रन ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को इसी मैदान पर खेला जाना है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड का रुख करेगी, जहाँ पर भारतीय टीम पहले 5 T20 मुकाबले खेलेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन के इस कार्यक्रम में कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें हमारे स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी

0: ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में

0: इतनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
3: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा

0: जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow. Shri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sihag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was

ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, कहीं छांव है, कहीं धूप है, और कहीं और भी कोई रूप है, कई चेहरे इसमें छुपे हुए, एक अजीब सी ये नकाब है, कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो दिया, कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है, कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कराहटों का बयां, कहीं बरकतों की है बारिशें, कहीं तिश्न की बेहिसाब है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए

सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें। आइए सुने कार्यक्रम की अगली गजल, नवाज देवबंदी की लिखी गजल, कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, श्याम महके तेरे तसव्वुर से, श्याम के बाद फिर शहर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, जहन और दिल में मेरे रात भर महके, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नज़र महके, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो जमी महके, वो सजर महके।

अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजलें। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंटवार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट

0: इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
0: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
0: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
0: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अननेसेसरी और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें। और होल्ड और वहां रहें, जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाता। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार

0: ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं हैं तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं। लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
2: जी,
3: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
2: जी,
3: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
2: जी।
3: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा।

0: ऐसा फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि ये सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ।
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देता। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में

0: वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है, उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क

0: प्लान करते हैं। सोचिए यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में, जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
2: जी,
3: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेप

प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अर्थात ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में एमए करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केन्या और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

0: साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Marke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The Ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The Ministry said that it was in direct reference to this specific and mischievous narrative that the Defence Minister made the statement in question. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:52 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।